0: Now, India now have another mixed team through the last four, this time in compound archery. It is Chikita and Sahil first defeated Mongolia 161-46 in the round of 16. They then faced Kazakhstan in the quarterfinal and came through 159-154. So both Indian mixed teams, recurve as well as compound, are now semi-finalists.
1: बैडमिंटन की बात कर लेते हैं दोस्तों. बैडमिंटन से हालांकि कुछ अच्छी खबर सुबह नहीं आई. मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने विश्व नंबर एक जोड़ी फेंग योंग और ह्वांग डोपिंग की जो उनसे मुकाबला था कड़ी चुनौती दी. भारतीय जोड़ी ने पहला गेम हालांकि 21-14 से गंवाया, लेकिन दूसरे गेम में शानदार वापसी करते हुए 21-18 से जीत दर्ज की और मुकाबले को निर्णायक गेम तक लेके पहुंच गई. तीसरे गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन अंत में विश्व नंबर एक जोड़ी जो चीन की जोड़ी है 21-18 से गेम जीतकर मैच को अपने नाम कर लिया. इस तरह ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को 14-21, 21-18, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जोड़ी का एशियन गेम्स में जो अभियान था यहीं थम गया.
0: We also have some sad results from the women's doubles quarterfinal, where Teresa Jolly and Gayatri Gopichand's Asian Games campaign has come to an end after they went down 18-21, 19-21 to Malaysia's world number 5 pair, Pearly Tan and Thina Muralitharan. The Indian pair did have a strong run into the quarterfinals. They had already defeated the world number 3 Japanese combination, and they also come into these games after winning historic bronze medal at the World Championships. But against the Malaysia, Teresa and Gayatri were competitive in the opening game, fought their way back after falling behind early, but Malaysia managed to regain control, particularly in the second game, and closed out the match in straight games. So disappointment for Teresa Jolly and Gayatri Gopichand.
1: महिला क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात कर लें जो अभी भी जारी है. अकाने यामागुची और उन्नति हुड्डा के बीच मुकाबला चल रहा है. पहला गेम था वहां पर अकाने यामागुची ने जीत लिया है, लेकिन दूसरा गेम नेक टू नेक चल रहा है. यानी यहां पर दोनों खिलाड़ी बराबर खेल रहे हैं. 10-9 का मुकाबला है दूसरा गेम. यहां पर देखना होगा किस तरह से क्या उन्नति हुड्डा वापसी करती हैं, क्या यहां पर गेम जीतकर तीसरे और निर्णायक गेम तक लेके जाती हैं. हालांकि फिलहाल कहना मुश्किल है. 11 पॉइंट बना लिए यहां पर अकाने यामागुची ने, जबकि उन्नति हुड्डा ठीक उनसे पीछे 10 पॉइंट पर खेल रही हैं. वहीं अब बात करेंगे एथलेटिक्स की, जहां तेजस्विन शंकर की बात करेंगे. जी हां, तेजस्विन शंकर ने डेकथलॉन में शानदार प्रदर्शन किया. भारत के तेजस्विन शंकर ने डेकथलॉन की 110 मीटर बाधा दौड़ में 14.33 सेकंड का समय निकालते हुए अपनी हीट में तीसरा स्थान हासिल किया. इसके साथ ही उन्होंने 932 अंक भी हासिल किए. चीन के चेंग शिंगहुआ ने 14.01 सेकंड में दौड़ पूरी कर 973 अंक, जबकि जापान के युमा मारियामा ने 14.00 सेकंड के समय के साथ 975 अंक अर्जित किए. इसके बावजूद तेजस्विन शंकर कुल 5,270 अंकों के साथ डेकथलान की समग्र तालिका में शीर्ष पर बने हुए. चेन शिंगवा 5,223 अंकों के साथ दूसरे, युमा मारियामा 5,163 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं.
0: And there is more encouraging news coming in from athletics. India's Santosh Kumar has qualified for the final of the men's 400 meters hurdles, finished second in heat 1, clocking 49.61 seconds to secure his place in the final.
1: बस दोस्तों, इस घंटे के अपडेट में अभी तक इतना ही. मिलते हैं अगले अपडेट में 10:30 पर. तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए. धन्यवाद.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: शुंचो 107 FM रेनबो. शात शुरे शारदे.
4: शुंचेन नमस्कार कोलकाता 107 FM रेनबो ते. नमस्कार कोलकाता.

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

सुप्रभात, नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। तो सुलक्षणा आप सभी का स्वागत करती है, खैर मकदम करती है, वेलकम करती है इस कार्यक्रम में। और जैसा कि जानते हैं कि फोन इन प्रोग्राम है, तो आपको भी ये इच्छा अंदर से तो होती ही है कि आप भी कार्यक्रम में जुड़े। तो विषय भी मैं बता दूंगी कि क्या विषय है, लेकिन पहले शुरुआत करें खूबसूरत से गीत के साथ। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज में इस गीत को सुनते हैं फिल्म कॉकटेल से।

हाँ जी, अगर हम लोग कहें कि आदत, आदत क्या है, शायद आदत वो है जिसके हम गुलामी करते हैं। तभी तो कहते हैं कि अ मैन इज अ स्लेव ऑफ हिज हैबिट्स, इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। और हम सब की आदत, कोलकाता में खासकर रहने वालों की आदत में, आदतों में एक आदत है 107 एफएम रेनबो के साथ जुड़ना, है ना, क्योंकि इसके साथ एक बार आप जुड़ जाते हो ना तो फिर ये कनेक्शन होता है दिल से दिल तक का, फिर दिल जो है दूर कहाँ ही रह पाता है। और अच्छी बात है ना, कहीं ना कहीं तो दिल जुड़ना ही चाहिए। और अगर संगीत से जुड़ जाए, इंफरटेनमेंट से जुड़ जाए, तो भला इससे बेहतर क्या हो सकता है। जीने की आदत, आदतन जीना, उठना बैठना काम करना, थोड़े थोड़े भविष्य से ढेर सारे अतीत इकट्ठा करना, बचा हुआ तब भी ढेर सारा भविष्य होता है। ऐसे में ईश्वर है कि नहीं शंका में कहती हूं, मुझे अच्छा मनुष्य बना दो और सबको सुखी कर दो। तो ढेर सारी बातें आप भी साझा कीजिएगा कि आपकी कौन सी अच्छी आदत है, कौन सी बुरी आदत है, कौन सी अच्छी आदत अपने अंदर आप लाना चाहते हैं और कौन सी बुरी आदत आप छोड़ना चाहते हैं। नंबर आपको पता ही है, 2243-7912। एंड बाय द टाइम आप नंबर डायल करें, क्यों ना हम सब मिलकर सुने उस गीत को जिसे हमने लिया है फिल्म लेडीज वर्सेज रिकी बेल से। बेनी दयाल और रणवीर सिंह की आवाज में इस गीत को आप तक पहुंचाती हूं, आदत से मजबूर।

0: देखते हैं हमारे टेलीफोन लाइन पे कोई कॉलर फ्रेंड हाजिर है, तो बातें कर लेते हैं कि उनकी आदतें कैसी हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार सुलक्षणा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
0: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? सुलक्षणा जी, मैं मोहम्मद नासिर, बेलियाघाटा से।
0: बेलियाघाटा से मोहम्मद नासिर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में। और आज हम बातें कर रहे हैं, मतलब उस एक बात से जुड़ी हुई है जो सबके अंदर है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। कुछ बुराइयों से हम निजात पाना चाहते हैं, कुछ अच्छाइयों को डालना चाहते हैं, और एक शब्द कहे तो वो आदत है। तो आपकी कौन सी ऐसी एक आदत है जो आप छोड़ना चाहते हैं, और कौन सी एक आदत है जो आप अपने अंदर लाना चाहते हैं, कल्टीवेट करना चाहते हैं?
1: जी बोलिए। तो आपने सबसे अच्छा आज का टॉपिक रखा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले
0: आप सभी का भी शुक्रिया।
1: जी जी, उसके बाद दूसरी बात मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज जो आपने लेके आया, अच्छी आदतें और बुरी आदतें आपके अंदर कौन सी, जिसे आप पसंद करते हैं या जिसे छोड़ना चाहते हैं, तो मैं बता दूं सुलक्षणा जी की मेरे अंदर अच्छी आदत सबसे

0: चाहिए है कि मैं जब भी कोई समाज सेवा काम करता हूँ या फिर अगर मैं किसी क्या हेल्प किसी भी तरीके से कर पाता हूँ तो मुझे अपने आप में बहुत संतुष्टि होती है, बहुत अच्छा लगता है।
1: भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, इंसानियत का इंसानियत की पहचान है ये।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे ये करने में अपने अंदर अंतर आत्मा जो कहते हैं ना, वो अंतर आत्मा जो संतुष्ट होती है। तो मैं कुछ सामाजिक कार्यों से रिलेटेड भी हूँ, इसलिए मैंने ये बात कहा है।
1: चलिए,
0: मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और
1: अच्छा,
0: बुरी आदत की अगर बात करूँ तो मुझे बुरी आदत ये है सुलक्षणा जी, जो मैं जिसके लिए मैं दूसरे और बहुत सारे लोगों के नजर में बुरा बन जाता हूँ, मुझे कोई भी गलत बात या गलत चीज है या कुछ किसी के खिलाफ कोई भी कर रहा हो, मेरे साथ ही नहीं किसी अदर इंसान के साथ भी कर रहा हो, तो मैं उसे देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाता, मैं तुरंत बोलता हूँ। जिसके लिए मुझे फैमिली के लोग भी कहते हैं ये आपकी बहुत बुरी आदत है, तुरंत किसी के मामले में भी आप दखलअंदाजी कर देते हैं या फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये बुरी आदत है जिसे मैं छोड़ना चाहता हूँ।
1: नाजिर भाई, आपको एक बात कहूँ, इस बुरी आदत को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि यही आदत, ये जो बुरी आदत जिसे आप कह रहे हैं ना, वास्तव में यही सबसे अच्छी आदत है, क्योंकि गलत का विरोध करना, सच बोलना, आज इसकी बेहद जरूरत है हमारे देश में।
0: जरूरत है। तो मुझे भी यही लगता है कि हाँ, मुझे भी नहीं
1: तो चाहे जितने लोग आपको बोले छोड़ दो, मैं यही आपसे आग्रह करूंगी कि इस आदत को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि हमारे जब जहां भी हम रहते हो या आसपास में कहीं भी बुराई इसलिए नहीं पनपती है कि बुरे लोग ज्यादा हैं, बुराई इसलिए पनपती है ज्यादा क्योंकि अच्छे लोग जो है वो चुप रह जाते हैं, सही समय पे आवाज नहीं उठाते। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप कार्यक्रम में जुड़े, फिर समय मिले तो बिल्कुल जुड़िएगा। नमस्कार,
0: शुक्रिया।
1: तो ऐसा है दोस्तों कि अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो डायल कीजिए 2243712। म्यूजिकली योर्स रहता आपके साथ 24/7 ऑल डे ऑल नाइट। लेकिन इस कार्यक्रम में आज के दिन आप कार्यक्रम सुनेंगे 10:52 तक ही। और ऐसा है कि रुक करते हैं अपनी अगली गीत की ओर, दिल चाहता है, क्योंकि चाहत और आदत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

0: चाहता है। दिल चाहता है श्रोताओं का भी कि फटाफट नंबर डायल करें और जुड़ जाएं कार्यक्रम में, और वो भी कौन सा कार्यक्रम है जी, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता का दी रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाला नॉन स्टॉप गपशप में। फिलहाल देखते हैं कौन है हमारे टेलीफोन लाइन पर। हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं बेलगरिया से शुभजीत बोल रहा हूँ।
0: शुभजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में। और ऐसा है कि आज का जो हमारा आदत है वो हैबिट से जुड़ी हुई है, मतलब विषय ही हैबिट है, और कहा भी जाता है कि मैन इज अ स्लेव ऑफ हिज हैबिट्स, इंसान अपनी आदतों का गुलाम है। अच्छी आदत हो तो हम गुलाम नहीं राजा बन जाते हैं, और अगर बुरी आदत हो तो फिर गुलामी ही करते रहते हैं। तो ये बताइए शुभजीत जी कि आपकी अच्छी आदतें कौन कौन सी है, और कौन सी ऐसी आदत है बुरी जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं?
1: दो, पहले तो अच्छी चीज बोल देते हैं, उसके बाद बड़ी।
0: अच्छा जी, ठीक है, ठीक है।
1: तो अच्छी चीज ये है कि मुझे किसी के सामने अगर वो गलत है तो गलत बोलना हमेशा, मैं बचपन से ऐसा हूँ, मुझे कभी भी पीठ पीछे बोलने की आदत है नहीं।
0: चलिए, बहुत अच्छी आदत।
1: मुझे लगता है ये अच्छी बात है, लेकिन सब शायद दूसरे को लगे कि ये गलत है।
0: हाँ, तो ये तो होता ही है ना, ब्लैक इज ब्लैक एंड व्हाइट इज व्हाइट।
1: जी, लेकिन मैं पर्सनली सोचता हूँ कि एक तरह से अच्छा है कि आप किसी के पीठ पीछे मत बोलो, सामने
0: नहीं, पीठ पीछे बोलो, अच्छा बोलो शुभजीत, पीठ पीछे बोलो, लेकिन अच्छी बातें, बुरी बातें नहीं,
1: अच्छी बातें।
0: और
1: एक चीज जो मैं सोचता हूँ कि ठीक हो, कि मैं बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हूँ।
0: दैट्स गुड।
1: मैं बहुत ही सोच समझ के खाना खाता हूँ।
0: वेरी गुड।
1: और बाहर का खाना बहुत ही कम, मतलब शायद 2-3 महीने में एक दो बार खा लेता हूँ बाहर का खाना।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। अब शुभजीत की बात सुनकर ना, जितने लोग सुन रहे होंगे कार्यक्रम, वो भी सोच रहे होंगे कि चलो आज से हम जरूर ये शुरू करते हैं हेल्थ वाले फंडा, ताकि हम भी फिट रहे, एवर ग्रीन दिखे, और जहां से भी गुजरे लोग कहे वाह क्या बात है, कितना हेल्दी ये इंसान। हाँ, हेल्थ इज वेल्थ रियली। और एक बात और कहना चाहूंगी कि हेल्थ इज वेल्थ तो हम कहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत होनी चाहिए सुबह जल्दी उठने से। वैसे मैं बता दूं कि सिद्धार्थ रॉय ने फोन किया था, और उन्होंने, मतलब आप ही के तरह वो भी श्रोता है, और उन्होंने कहा कि मेरी एक बुरी आदत है, और वो मतलब बाइक पे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सुन रहा हूँ, लेकिन क्या है ना कि मैं शामिल नहीं हो सकता। तो ये जरूर कह दीजिएगा कि मेरी एक अच्छी आदत थी जो बीच में खो गई है, और वापस उसे लाना चाहती हूँ, और वो आदत है कि सुबह जल्दी उठना, क्योंकि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो शुभजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यूं ही जुड़ते रहिएगा और कार्यक्रम में जो है रंग भरते रहिएगा। तो दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 10:27, और शुभजीत ने बात की हेल्थी कॉन्शियस खान पान की। तो अब क्या है ना कि खाने की बात आती है तो मुझे पता नहीं क्या बताऊं, आई एम वेरी फूडी, मुझे भूख लग जाती है।
2: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की,

0: 2026 update.
1: This IG Nagoya.
2: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं विदुषी वत्स से। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग से भारत के लिए बेहद अच्छी खबर आई है। एशियाई खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत का पहला बॉक्सिंग पदक पक्का कर लिया है। अंकुश ने ताजिकिस्तान के नेजरुक सलीमो को 5-0 के सर्वसम्मत निर्णय से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अंकुश ने मुकाबले के दौरान शुरू से ही आक्रामक और नियंत्रित बॉक्सिंग का प्रदर्शन किया और पांचों जजों ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इस जीत के साथ ही अंकुश ने एशियाई खेलों में भारत के लिए बॉक्सिंग का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। अब सेमीफाइनल में अंकुश पंघाल के सामने बेहद कड़ी चुनौती होने वाली है। उनका मुकाबला उज़्बेकिस्तान के मौजूदा विश्व चैंपियन फजलुद्दीन एर्केबेनोव से खेला जाएगा।
3: And there is encouraging news coming in from the athletics track with Santosh Kumar first booking his place in the men's 400 meters hurdles final, finishing second in his heat in 49.61 seconds. And now India has added two more finalists in the women's 400 meters hurdles with Vithya Ramraj and Anu Raghavan both making it through. Vithya produced a strong run clocking 55.73 seconds to finish third overall, while Anu Raghavan was right behind her, recording 55.84 seconds and taking fourth place overall. So three Indian athletes across the men's and women's 400 meter hurdles have now made it through to their respective finals.
2: डेकाथलॉन की बात करते हैं, जहां पर डिस्कस थ्रो के बाद तेजस्विन शंकर तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। डिस्कस थ्रो में मुश्किल प्रदर्शन करते हुए तेजस्विन शंकर ने 36.77 मीटर की दूरी तय की और 599 अंक अर्जित किए। अब उनके कुल 5,869 अंक हो गए हैं और वो तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। चीन के चेन शिंगुआ 5,919 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि जापान के युमा मारियामा 5,914 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। तेजस्विन अब पोल वॉल्ट और भाला फेंक स्पर्धाओं में भाग लेंगे।
3: And now some results.

0: coming in from Kurash. It has been a difficult outing for India today, with all four athletes who competed seeing their Asian Games campaigns come to an end. In the men's plus 90 kilogram category, Yash Kumar Chauhan lost his round of 16 bout 0-10 to Tajikistan's Mirmamadov. Vishal did make it through to the quarterfinals in the same category, but his campaign ended there after a 0-5 loss to Thailand's Yeon. In the women's 57 kilogram category, Sangeeta was beaten 0-10 by Philippines' Quilino in the round of 32. Bharati also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Azerb Vened. So, four Indian Kurash athletes in action today, and all four have been eliminated. There are still two more Indians to watch in Kurash on September 28 and September 29.
1: Nidhi, ab lambi kood ki baat kar lete hain. Udhar Mulli Shishankar ne 7.84 meter ki chhalang lagakar lambi kood ke final ke liye qualify kar liya. Hangzhou mein hue pichle sanskaran mein rajat padak vijeta rahe. Shishankar ne शीर्ष 12 में जगह बनाने के लिए दूसरे स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाई है. प्रतियोगिता में भाग ले रहे अन्य भारतीय खिलाड़ियों में डेविड सोलेमन ने 7.62 मीटर की छलांग लगाकर सातवें स्थान पर रहकर पदक के लिए क्वालिफाई किया. फाइनल कल यानी सोमवार को खेला जाएगा. यहीं पर एक और खबर दे देते हैं, बैडमिंटन की महिला युगल मिश्रित युगल के बाद महिला एकल में भी आज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अपने अपने मैच हार कर बाहर हो गए. अभी कुछ देर पहले समाप्त हुए महिला एकल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने एशियाई खेलों में अपने पदार्पण में मुकाबले में हार गई है. हालांकि उन्होंने 3 बार की विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी, लेकिन 16-21, 21-14, 17-21 से हार गई है. वहीं पर बात करें पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु अपना मुकाबला महिला एकल का खेल रही चेन यू फेई के खिलाफ और पहला गेम वो जीत चुकी हैं. यहां एक उम्मीद बची हुई है, क्या यहां पर पीवी सिंधु जीतकर भारत को खुशखबरी देती हैं.
0: Moving across to fencing, India's women's sabre team also saw their campaign come to an end in the quarter final. The Indian team featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin Jess and Shruti Joshi went down 35-45 to Uzbekistan. So after reaching the quarter final stage, the Indian women's sabre team could not make it through to the semi-finals. And now let's turn to shooting, where the trap competition continues. In the women's trap event, Neeru Dhanda is currently leading the individual standings at number 1. After 2 days of competition, she added 48 out of 50 targets on day 1. India's women trap team has also finished day 2 in second position in the team standings, with Ashima Alawat currently at 16th position individually. In the men's trap event, Kenan Chennai had a perfect start, hitting all 25 targets in his opening round. He then managed 22 in the next round and is currently at 11th individually. Shapat Bhardwaj at 22, with Indian men's team finishing day 1 in 7th position in the team standings. And a live update coming from the precision round, Indian women's team is 3rd and 25 meter pistol and the rapid round to follow.
1: जी चलते चलते आपको ये भी बता दें, महिलाओं की मैराथन रेस वॉक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. प्रियंका गोस्वामी करीब 9 मीटर के बाद डिस्क्वालीफाई कर दी गई. वहीं मंजू रानी 3 घंटे 40 मिनट 17 सेकंड के समय के साथ छठे स्थान पर ही. दोस्तों अब अगली अपडेट में आपसे मुलाकात होगी 12:30 पर. फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथी विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए. धन्यवाद.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: अभी आपने सुना 28 एशियन गेम्स 2026 का एफएम अपडेट. और अब रुक करते हैं अपने कार्यक्रम की ओर, यानी कि नॉन स्टॉप गपशप. म्यूजिकली योर्स पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप विद योर आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत. और आज हम बात कर रहे हैं कि आदतों पर. इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है, और अगर आदतें अच्छी हों तो राजा बन जाते हैं हम, और अगर बुरी हो तो गुलामी ही करते रह जाते हैं. तो क्यों ना अगर हमें आदत अपनानी हो, आदत डालनी हो तो अच्छी आदत डालें. ये बिल्कुल सच है कि इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। हमारी 90% रोजमर्रा की गतिविधियां हमारे आदतों से ही तय होती है। अच्छी आदतें हमें कामयाबी की तरफ ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें पीछे धकेल देती हैं। अपने अंदर अच्छी आदतें विकसित करने के लिए आप कुछ आसान और व्यवहारिक तरीकों को भी अपना सकते हैं, जैसे कि शुरुआत छोटी करें, स्टार्ट माइक्रो स्मॉल। जैसे कि किसी बड़े लक्ष्य की शुरुआत करने की बजाय छोटे, बेहद छोटे कदम से शुरू करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज एक घंटा पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 2 पन्ने पढ़ने की आदत डालें। अगर सुबह 5 बजे उठना है तो रोजाना सिर्फ 15 मिनट पहले उठना शुरू करें। और इसी तरह आदतों को दूसरी आदतों से जोड़ें। अपनी किसी पुरानी पक्की आदत के तुरंत बाद नई आदत को जोड़ दें। सुबह की चाय पीने के बाद पुरानी आदत, मैं 5 मिनट डायरी लूंगा, नई आदत, या रात को मैं ब्रश करने के बाद मैं 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। उसी तरह अगर आप ट्रिगर और माहौल बदलिएगा तो ऐसा है कि दिमाग किसी न किसी इशारे ट्रिगर पर काम करता है। अपने माहौल को ऐसा बनाएं कि अच्छी आदत शुरू करना आसान हो जाए। उदाहरण के तौर पर कहते हैं ना कि इंसान एग्जाम्पल से ज्यादा सीखता है। अगर सुबह कसरत करनी है तो रात को ही अपने जूते और कपड़े बेड के पास रख दे। अगर पानी पीने की आदत डालनी है तो काम करने की मेज, मतलब क्या कहें, तो फिर पानी आप जो है ना मेज पर रखें, बोतल में रखें, जग में रखें, और आदत बनाएं कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो अच्छी आदतें अपनाएंगे। और फिलहाल आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में हम एक चुटकी नुस्खे भी जो है आपसे शेयर करते हैं।
4: एक चुटकी नुस्खे,
3: और ऐसा है कि एक चुटकी नुस्खे में यही कहूंगी कि अच्छा होता है कभी कभार ऐसा होता है, ओवर ईटिंग हो जाता है। खाना अच्छा हो, डिलीशियस हो, यमी हो, माउथ वाटरिंग हो तो ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन एक चुटकी नुस्खे में बताऊंगी कि उसे अगर हजम करना है तो क्या करें। सबसे पहली बात तो ये है कि ज्यादा ना खाएं, और अगर गलती से हो जाए तो पान लें और उसमें इलायची डालें, छोटी वाली इलायची, लौंग डाले, थोड़ा सौंफ डाले और उसे मुंह में डाले और बहुत अच्छी तरीके से उसे चबा चबा कर खाए, ताकि जितना आप चबाएंगे उतना, एक तो क्या है कि वो बहुत ही डाइजेशन में फायदेमंद है और पान खाना सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आज एक चुटकी नुस्खे में यही मैंने आपसे साझा किया। और फिलहाल आपको बता दूं कि आज के दौर में क्या लड़का क्या लड़की, हर उम्र के लोग बहुत ही अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना चाहते हैं, यानी कि कहूं तो फैशन का जलवा चल पड़ा है।
5: जलवा

0: देखते हैं हमारे टेलीफोन लाइन पे कोई कॉलर फ्रेंड हाजिर हैं तो क्या कहना है उन्हें। हेलो, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहती हैं, वरना पता कैसे चलेगा कि लोग डायल करते हैं और फिर अपनी बात कहने से थोड़ा सा मतलब घबराहट तो होती ही है ना भाई। अब सोचने वाली बात है कि आप एफएम रेनबो पर जब बात करने आए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि आज के दिन में क्या आपसे साझा करने वाली हूं।
1: आज के दिन,
0: आज के दिन यानी कि आप समझ सकते हैं कि आज के दिन हम 27 सितंबर को मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। और भला ऐसा कौन है जो घूमना फिरना नहीं चाहता, हर कोई घूमना फिरना चाहते हैं और कहते हैं कि ट्रैवलिंग इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एजुकेशन। और अगर ये आदत हम अपना लें कि हर साल हमें एक बार दो बार जो है बाहर टूर पे जाना है, घूमना है, फिरना है, तो उससे बहुत कुछ हम सीखते हैं सकारात्मक तरीके से। और ऐसा है कि इस साल का जो थीम है डिजिटल एजेंडा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से पर्यटन का पुनर्निर्माण यानी कि डिजिटल एजेंडा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रीडिजाइन टूरिज्म है। और इसकी आधिकारिक शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन UNWTO द्वारा वर्ष 1980 में की गई थी, जबकि इसके कानूनों को 27 सितंबर 1970 को अपनाया गया था। मेजबान देश इस बार 2026 में है। इस वर्ष जो आधिकारिक वैश्विक समारोह एल सल्वाडोर में आयोजित किया जा रहा है, तो फिलहाल हम भी क्यों ना निकल पड़े बाहर घूमने के लिए, क्या कहते हैं? चलिए चलते हैं खंडाला। फिल्म गुलाम से ये गीत सुनिए।

0: करेंगे और क्या।
1: ऐसा है दोस्तों की आदतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक आदत मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि ज़रूर करें, क्योंकि ये जो आदत है ना, ये एक तरीके से दान के रूप में भी देखा जाता है। अगर आपकी आदत में हो कि आप ज्ञान दान करें तो बड़ी अच्छी बात है, उससे भी बड़ी बात है कि आप अपने अपनों से जब भी मिलें तो उनकी तारीफ़ ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि तारीफ़ करना बहुत अच्छी बात है और लोग बड़े खुश होते हैं और कहीं ना कहीं एनर्जी से लबालब हो जाते हैं और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है। ठीक वैसे ही जैसे आप ट्यून करते हैं 107 FM रेनबो और कार्यक्रम सुनते हैं 107 पर, तो कहीं ना कहीं आपका चेहरा जो है खिल उठता है। उसी तरह जब भी कोई सामने दिखे अपना तो उसकी तारीफ जरूर करें, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां जरूर होती हैं। और तैयार बैठिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे मन की बात।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: The best of entertainment, information, education अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: दल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
7: कहाँ

0: सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में PM बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें, जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा, बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था, तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी

ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी

यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए, जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना, उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर

अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहाँ फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था, तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध, ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी
इससे जुड़ी है। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े, और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं, यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने आचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और

पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती है। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खान पान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश

0: ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिका नेत के रूप में की जाती है, और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहाँ हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: এতক্ষণ শুনলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রচারিত মন কি বাতের 138তম পর্ব। এবার শুনবেন অনুষ্ঠানটির বাংলা রূপান্তর। অনুষ্ঠান একযোগে প্রচারিত হচ্ছে আকাশবাণী কলকাতার গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গ মিডিয়াম ওয়েভ 456.6 মিটারে অর্থাৎ 657 কিলোহার্টজে, সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গ মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটারে অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে, আকাশবাণী মৈত্রী প্রচার তরঙ্গ 505 মিটারে অর্থাৎ 594 কিলোহার্টজে, আসানসোল রিলে কেন্দ্র থেকে এফএম প্রচার তরঙ্গে 100.3 মেগাহার্টজে, বর্ধমান রিলে কেন্দ্র থেকে এফএম প্রচার তরঙ্গে 101.5 মেগাহার্টজে, বালুরঘাট রিলে কেন্দ্র থেকে এফএম প্রচার তরঙ্গে 101 মেগাহার্টজে, পুরুলিয়া ফারাক্কা রিলে কেন্দ্র থেকে

0: Women's compound team will take on Korea as well, while the mixed compound team will face Thailand. That means India has now secured 6 team semi-final berths across recurve and compound archery, all set scheduled for October 2nd. All in all, it has been an amazing day for Indian archery.
1: विदुषी, डेकाथलॉन में भी आह और वाह का दौर जारी है। डेकाथलॉन में स्पर्धा में जो मुकाबले खेले जा रहे हैं, स्पर्धाएं खेली जा रही है, उसमें तेजस्विन शंकर 8 स्पर्धाओं के बाद 6,571 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। जापान के युमा मारियामा 6,855 अंक के साथ पहले और चीन के चेन शिंगहुआ 6,709 अंक के साथ दूसरे स्थान पर। तेजस्विन की बात करें तो अब लॉन्ग जंप में 7.53 मीटर और हाई जंप में 2.18 मीटर का शानदार प्रदर्शन किया, जबकि 110 मीटर हर्डल्स में उन्होंने 14.33 सेकंड का समय निकाला, जबकि पोल वॉल्ट में कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा, 4.30 मीटर की छलांग लगाकर 702 अंक हासिल किए। यहां पर उम्मीद की जा रही थी तेजस्विन शंकर शानदार कुछ करेंगे, लेकिन यहां पर वो अपना चूक गए हैं। लेकिन डेकाथलॉन की दो स्पर्धाएं अभी बाकी हैं। तेजस्विन की नजरें अब इन स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पदक की स्थिति मजबूत करने पर होगी।
0: A quick update on shooting as well, where the Indian women have completed the precision qualification in the 25-meter pistol event. Isha Singh leads the Indian challenge at this stage, finishing the precision qualification with 290 points to sit 6th. Rahi and Manu Bakar are next, both on 287 points, currently placed 15th and 16th respectively. There is still more shooting action to come, so the Indian trio will be looking to build on these scores as the event progresses.
1: Badminton ki baat kar lete hain Vidushi, badminton mein aaj भारत को 4 मुकाबले खेलने थे, चारों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही आज महिला एकल, महिला युगल, मिश्रित युगल और इसके साथ ही साथ बात करें तो तमाम जो मुकाबले महिला युगल के, सभी मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल में पीवी सिंधु को चीन के वर्ल्ड नंबर 4 और ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई ने 11-21, 21-18, 10-21 से हराया। वहीं उन्नति हुड्डा ने 3 बार के विश्व चैंपियन जापान के अकाने यामागुची को कड़ी टक्कर दी। उन्नति ने दूसरा गेम जीतकर मुकाबला बराबरी पर ला दिया था, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। स्कोर की बात करें तो उन्नति को जो स्कोर हासिल हुआ, जो स्कोर किया 16-21, 21-14 और 17-21 से वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह महिला युगल में टिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को मलेशिया की पोलिटैन और थीना मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार मिली, जबकि मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो ने चीन की फेंग झोंग और डोंग पिंग के खिलाफ संघर्ष जरूर किया, लेकिन उन्हें 14-21, 21-18, 18-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। चलते चलते एक और खबर आपको दे देते हैं। एशियन गेम्स के जो मुकाबले चल रहे हैं, महिला भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर 9वें स्थान पर रही। हरजिंदर कौर ने स्नैच में 94 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 110 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाकर प्रतियोगिता की अपना जो अभियान था वो समाप्त किया। हरजिंदर कौर इसी के साथ ही पदक की दौड़ से बाहर हो गई और 9वें स्थान से उन्हें संतोष करना पड़ा। दोस्तों, अगले घंटे में फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन हाँ, उठा पटक जापान में जरूर जा रही है, कुछ अच्छी खबरें भी आएंगी, शाम तक जरूर बने रहें आकाशवाणी के साथ। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वस को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
2: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त विदुषी वत्स। विदुषी, जैसा कि हम पिछली अपडेट में बात कर रहे थे, भारत के जो मेडल हैं वो अभी कुछ खास नहीं, लेकिन इस घंटे की अपडेट में बहुत बड़ा अपडेट आया है, बहुत खास मेडल आया है भारत के लिए। बताना चाहूंगा महिलाओं के जो बात करें तो अभी मुकाबले शुरू होने अनाहत सिंह उतरेंगी, लेकिन उससे पहले एक और खबर आ गई है। एशियाई खेलों में भारत के अभय सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल स्क्वाश में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, फाइनल में अभय सिंह को मलेशिया के एनईओ के हाथों 9-11 5-11 5-11 से शिकस्त का सामना करना पाए। स्क्वाश का मुकाबला था, लेकिन यहाँ पर उम्मीद जरूर थी अभय सिंह यहाँ पर गोल्ड जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से मलेशियाई खिलाड़ी ने उन्हें लगातार 3 गेमों में लगातार हराकर जीत दर्ज की, इसलिए उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अभय ने मुकाबले में जोरदार शुरुआत की और कई मौकों पर अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी चुनौती दी। तीसरे गेम में भी उन्होंने शुरुआत में बढ़त बनाने की कोशिश की, लेकिन एनईओ ने जल्द ही अपनी लय हासिल कर ली, मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। इस जीत के साथ ही एनईओ लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों का पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया, जबकि अभय सिंह को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं अनाहत सिंह, जिसका मैंने जिक्र किया था, सबसे ज्यादा उम्मीदें अनाहत सिंह पर है। महिला एकल के फाइनल मुकाबले में सिंह सुवारी सुब्रमण्यम के खिलाफ उतरेंगी भिड़ेंगी, यहां भारतीय जरूर उम्मीद करेंगी गोल्ड मेडल यानी पीला तमगा है। लेकिन हां, आज का दूसरा पदक आ चुका है। इससे पहले आपको बता दें अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम वजन वर्ग में पदक पक्का किया सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए। आज का दूसरा पदक यानी 2 पदक भारत की झोली में अब तक आ चुके हैं।
3: With these two brilliant news, we can absolutely say that it is in total a very mixed day for India today. So now we take a complete update from women's specific draw, where India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. South Korea took the opening game 15-8 before winning the second 15-3 to wrap up the match in straight games. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines, and they came away with another state games victory for Philippines, winning 15-12, 15-6. So India have now suffered 2 defeats in 2 Group B matches, losing both encounters 0-2.
2: घुड़सवारी की बात कर लेते हैं। आईसी नागोया में भारत का जो घुड़सवारी का अभियान है वो समाप्त हो गया। जी हां, एशियन गेम्स में जिस तरह से उम्मीद की थी, पिछली बार जिस तरह प्रदर्शन था वैसा प्रदर्शन इस बार देखने को नहीं मिला। हृदय छेदा 72.680 के स्कोर के साथ इंडिविजुअली ड्रेसेस फाइनल में 8वें स्थान पर रहे, जबकि उनके साथ ही जयसूद 71.490 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर रहे। हां, यहां पर एक और खबर दे दें, इंडिया वर्सेज वियतनाम। जी हां, भारत बना वियतनाम का जो वॉलीबॉल का मुकाबला चल रहा, भारत ने 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है। अगर बताएं पहले सेट की बात करें तो भारत ने 25-23 से वहां पर अपना जो सेट था वो जीता था। जेरेमी विनीत ने पहले सेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 अंक अर्जित किए थे। यहां पर भारत ने अब 2 जो सेट है अपने नाम कर लिया। पहला सेट जैसा मैंने बताया 25-23 से, दूसरा सेट 23-18 से जीत लिया, यानी दूसरे सेट में भारत ने और बेहतर प्रदर्शन किया है और देखना है कि भारत आगे किस तरह प्रदर्शन करेगा। हालांकि अब स्कोर ताजा अपडेट बता दे, दोनों के तीसरे सेट में 1-1 अंक बने हैं। विदुषी,
3: Absolutely. Now let's move on to the surfing update of the day, where India has had mixed results in the women's and men's short board events. Starting with the women's competition, Kamali Murthy was in action in round 3 against Indonesia. She scored 5.93 across 2 waves, while her Indonesian opponent finished with 11.64.

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। रेनबो पर।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के साथ आपके अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति लेकर कार्यक्रम तीन का तड़का सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। घड़ी के दोनों कांटे जब मिल जाए तीन पर, तो समझ जाइए कि वक्त आ गया है आलस को भूल कर सीधे दिल से जुड़ने का। और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के दिन का सबसे पसंदीदा स्लॉट, यानी कि कार्यक्रम तीन का तड़का। तो दोस्तों, आज की ये दोपहर अपने साथ एक बहुत ही खास वजह लेकर आई है, क्योंकि आज है 27 सितंबर को पूरी दुनिया मना रही है विश्व पर्यटन दिवस, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे। बात जब पर्यटन और टूरिज्म की आती है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि किसी दूर देश के टिकट कटवाने होंगे, बड़े बड़े पहाड़ या समंदर देखने होंगे। पर सच कहूं, सबसे खूबसूरत सफर तो दो दिलों के बीच तय होता है। जब कोई अजनबी आपकी जिंदगी में आता है, तो एक नई दुनिया, एक नया शहर सब बस जाता है। हर सफर की शुरुआत एक किस्से से होती है, और आज की इस खास शो की शुरुआत भी मैं करने जा रही हूँ एक ऐसे ही दिलकश अफसाने के साथ, जहाँ रास्ते चाहे जो भी हो, मंजिल सिर्फ एक दूसरे का साथ होती है। तो चलिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे के सुहाने सफर पर पहला कदम बढ़ाते हैं फिल्म गब्बर इज बैक के बेहद प्यारे और सुरीले गीत के साथ। सुनते हैं अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज में इस गीत को।

संडे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस सफर चाहे ट्रेन की खिड़की से खेतों को निहारने का हो या फिर दोस्तों के साथ किसी अनजानी सड़क पर कार दौड़ाने का हो या फिर रोजमर्रा की भागदौड़ में अपने ही शहर को एक नए नजरिए से देखने का घूमने फिरने का मजा ही कुछ अलग होता है। दोस्तों आज इस पूरे एक घंटे हम लगाने वाले हैं बॉलीवुड ट्रिप्स और बेहतरीन धुरों का सबसे करारा तड़का। तो चलिए दोस्तों एक ऐसे तड़के के सफर से यानी कि प्यारे से मधुर तराने से अगली जो गीत है वो है जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है। तो चलिए इस प्यारे से यानी कि एक शानदार गीत की ओर रुख करते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ बता दो कि स्टूडियो में समय हो चला है 3:11:30 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का भी ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। और दोस्तों बात और गीतों का ये सिलसिला चलने वाला है ठीक शाम के 4 बजे तक। तो चलते हैं दोस्तों अगले गीत की ओर। और हाँ, रेडियो को चैनल को अभी अभी अभी बिल्कुल भी बदलने की आवश्यकता नहीं है।

तो दोस्तों इसे ही कहते हैं असली बेफिक्री। क्या कमाल की एनर्जी और मस्ती थी मोहित चौहान की आवाज में। सुनते ही लगता है ना कि बस अभी सारे काम छोड़कर किसी अजनबी शहर की गलियों में निकल जाए मटर कस्ती करने। तो दोस्तों अभी अभी आपने सुना फिल्म तमाशा का ये गीत, और इसकी शूटिंग जानते हैं कहाँ हुई थी? फ्रांस के एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक द्वीप यानी कॉर्सिका पर। बॉलीवुड के इतिहास में ये पहली ऐसी मुख्य धारा की हिंदी फिल्म थी जिसे उस द्वीप पर शूट करने के लिए इजाजत मिली थी। निर्देशक इम्तियाज अली का कहना था कि वे दो ऐसे किरदारों को दिखाना चाहते थे कि जो अपनी पहचान, अपना नाम और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के ठर्रे को पीछे छोड़कर बस उस पल को जी रहे हो। और सच में टूरिज्म का या सफर का असली मकसद भी तो यही होता है ना, किसी नई जगह जाकर उस जगह जैसा हो जाना बिना इस फिक्र के कि कल क्या होगा। तो चलिए फ्रांस के उस खूबसूरत द्वीप से अपनी संगीतमय यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते एक ऐसे सफर पर जहां हवाएं खुद अपने साथ एक नई कहानी लेकर आती है। बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों अगले जो गीत है यानी कि फिल्म जब हैरी मेट सेजल से, अगला ये गीत अरिजीत सिंह की रूहानी आवाज में।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर।

0: क्या बात है, अमित त्रिवेदी की ये धुन और स्वरानंद किरकिरे की वो मासूम से शब्द। सच कहूँ तो दोस्तों, ये गाना सिर्फ एक भाषा सीखने की बात नहीं करता है, ये बात करता है खुद के खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से पाने की। फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में जब दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी जी का ये किरदार शशि पहली बार भारत से न्यूयॉर्क की धरती पर कदम रखता है, तो वो सिर्फ एक भौगोलिक सफर नहीं था। अनजान शहर, अजनबी चेहरे और एक ऐसी भाषा जो उन्हें नहीं आती थी, और उस डर से लड़कर खुद को साबित करना, यह किसी भी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सफर होता है। और अक्सर हम सोचते हैं कि टूरिज्म का मतलब सिर्फ नई इमारतें या फिर कुदरती नज़ारे देखना है, लेकिन असल में जब आप किसी नई जगह में जाते हैं तो वहाँ की चुनौतियाँ आपके अंदर एक नई ताकत से रूबरू कराती है और सफ़र आपको बदल देता है, आपको पहले से बेहतर बना देता है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी कभी आपको किसी नए मोड़ या अनजानी राह पर ले जाकर खड़ा कर दे तो घबराइएगा मत, बस अपनी इस जिंदगी से थोड़ा और प्यार कर लीजिएगा। तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला है बिल्कुल 3:30, यानी कि वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परियोजना प्रस्तुति की ओर बढ़ने का।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: तो दोस्तों, मैं आप सभी को भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजना के बारे में बताने जा रही हूं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। साथियों, जीवन अनमोल है, लेकिन जीवन अनिश्चित भी। किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है घर का कमाने वाला व्यक्ति। अगर किसी कारणवश उसकी असमय मृत्यु हो जाए तो परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता है। ऐसे ही संकट के समय परिवार को सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। यह योजना खास तौर पर आम नागरिकों को कम प्रीमियम में जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है, और इस योजना की मुख्य विशेषताएं यह है कि इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उसके परिवार या नामांकित व्यक्ति को 2,00,000 रुपए की बीमा राशि दी जाती है, और यह बीमा सुरक्षा पूरे 1 वर्ष के लिए होती है और हर साल स्वतः नवीनीकरण किया जा सकता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है इसका कम प्रीमियम। इसमें केवल 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होता है और जो सीधे बैंक खाते में स्वतः ही कट जाता है, यानी साल भर की सुरक्षा, वो भी बहुत कम खर्च में। इस योजना का लाभ वे सभी लोग उठा सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो और जिनका बैंक खाता हो। बैंक खाता होना आवश्यक है क्योंकि बीमा राशि और प्रीमियम दोनों बैंक के माध्यम से ही संचालित होते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को किसी भी सरकारी या निजी बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जनधन खाते के माध्यम से लिया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया बहुत ही सरल है, बैंक जाकर या बैंक की ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से इस योजना से जुड़ा जा सकता है। साथियों, इस योजना का उद्देश्य केवल बीमा देना नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि किसी परिवार को अचानक आई विपत्ति के कारण आर्थिक रूप से टूटना ना पड़े। आज के समय में जब जीवन में कई प्रकार की अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर सामने आती है। यह योजना गरीब, मध्यम वर्ग और आम जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ नहीं लिया है तो अवश्य इस योजना से जुड़े और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करें। धन्यवाद।
1: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

आवश्यक सूचना 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को अपहरण 12:30 तक मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरा का उल्लेख अवश्य होना चाहिए और साथ ही साथ पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत श्री एससी दास, सहायक निर्देशक डाक सेवा, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmghyfnwb@indiapostpost.gov.in या फिर edpgcowb@gmail.com या फिर pg.wb@indiapostpost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा से दूरभाष संख्या 0332212050 या फिर 0332212612 या फिर 0332212060 पर संपर्क किया जा सकता है।

सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों में ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकारी आदि से संबंधित विविध मामलों में नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

0: डाक अदालत। अधीक्षक आरएमएस एसपी मंडल की अध्यक्षता में आरएमएस एसपी मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक आरएमएस एसपी मंडल कार्यालय 2 MG रोड हावड़ा चौथी मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 7111101 में गूगल मीट के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में आरएमएस एसपी मंडल से संबंधित आरएमएस सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपनी सहायक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल के माध्यम से अधीक्षक आरएमएस एसपी मंडल हावड़ा 7111101 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे दिनांक 28/9/2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाए। शिकायतकर्ता अपनी ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहकों शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपयुक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हो। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अधीक्षक से दूरभाष संख्या 0332641595 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक यथासमय साझा कर दिया जाएगा। कानूनी मामलों और नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरणों पर उपयुक्त डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का 107 FM रेनबो पर। तीन का तड़का 107 FM रेनबो पर।

दोस्तों, बातों बातों और खूबसूरत नगमों के बीच ये एक घंटा कैसे पलक झपकते ही गुजर गया, सचमुच पता ही नहीं चला। और घड़ी की दोनों सुइयां अब 4 की तरफ इशारा कर रही है, और इसका मतलब है कि अब वक्त आ गया है कि आज के इस सुहाने सफर को यहीं समेटने का। तो दोस्तों, आज हमने विश्व पर्यटन दिवस के इस मौके पर हमने गानों और यादों के जरिए जो सफर तय किया, उम्मीद है कि उसने आपकी दोपहर को बिल्कुल तरोताजा कर दिया होगा। तो दोस्तों, चलते चलते बस इतना ही कहूंगी कि नई जगहों को देखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि जिंदगी के हर छोटे सफर पर पूरे दिल से जीना। बैकपैक करके मौका जब भी मिले निकल पड़िए, क्योंकि रास्ते ही हमें खुद से मिलवाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त ज्योति अब आप सभी से लेती हूँ इजाजत। तो दोस्तों, फिर जल्द ही हाजिर हो जाऊंगी कुछ नए किस्से, मीठी गपशप और बेहतरीन दोनों को तड़का लेकर, और आपके अपने शो में यानी कि कार्यक्रम 3 का तड़का में। तो दोस्तों, तब तक अपनी मुस्कान को बनाए रखिए और अपना ख्याल रखिए, और हाँ, रेडियो की इन खूबसूरत तरंगों से जुड़े रहिए। अलविदा दोस्तों, और साथ ही साथ आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ। मैं तो जा रही हूँ दोस्तों, पर आप कहीं मत जाइए, यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

0: তুমি শুনছো উইকেন্ড ক্যাফে 107 FM রেনবোতে। উইকেন্ড ক্যাফে, উইকেন্ড ক্যাফে।
1: অপরূপা, এই যে তুমি বেড়াতে যেতে চাইছো, তাহলে তুমি শুধু সমুদ্রের কথাই বলবে নাকি তুমি পাহাড়ের কথা একটু বলবে?
2: তুমি যা ফ্রেমের লোভ দেখালে, যা শোনালে, তোমার কথা শুনেই যা যা চোখে ভেসে উঠলো, তাতে একটু পাহাড় ঘুরতে যাওয়া যেতে পারে।
1: আমরা প্ল্যান করেছি কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায় এই লক্ষ্মী পুজো থেকে কালী পুজোর মধ্যে, যে গ্যাপটা যখন আমাদের আশপাশে অনেক কিছু ছুটি থাকে, স্কুল ছুটি থাকে, অনেক অফিস ছুটি থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আমার মতো যারা কোনো কাজ কর্ম করে না, তারা তো সবসময় ছুটি পায়।
2: আচ্ছা,
1: তো আমরা বেড়াতে যাওয়ার জন্য প্ল্যান করেছি যেগুলো, সেটা হচ্ছে তার মধ্যে একটা, এক নম্বরে হচ্ছে প্রথমেই বলেছিলাম যে নেপাল। নেপাল আর অসাধারণ
3: এশিয়ান গেমস 2026 আইচি নাগোয়া।
4: जैसे जैसे शाम ढल रही है, एशियन गेम्स से भारत के लिए कई अच्छी खबरें आ रही है। उन खबरों को बताने के लिए एक बार फिर हाजिर हैं हम। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी, मेरे साथ हैं विदुषी वत्स। तो चलिए इस घंटे के अपडेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं भारत की झोली में जो पदक आया। जी हाँ, एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स से भारत के लिए एक और पदक पक्का हो गया है। महिला 100 मीटर दौड़ के फाइनल में भारत की हरिता भद्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 23.20 सेकंड का समय निकालते हुए तीसरा स्थान पर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। हरिता ने पूरे फाइनल में दमदार चुनौती पेश की और पोडियम पर जगह बनाकर भारत की पदक तालिका में एक और पदक जोड़ दिया है। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की दूसरी धाविका उन्नति बोलैंड भी फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन छठे स्थान पर रहते हुए उन्होंने अपना जो अभियान था वो समाप्त किया। इस तरह महिला 100 मीटर में भारत के खाते में ब्रॉन्ज मेडल आया और एथलेटिक्स में देश की पदक की संख्या में इजाफा हुआ। जिस तरह से हरिता भद्रा ने दिल्ली में इंडिया ओपन

0: प्रदर्शन किया था और यहीं पर उन्होंने अपनी बातचीत में आकाशवाणी से बताया था, मैं 23 से ऊपर अगर एशियन गेम्स में करूंगी तो यकीनन पोडियम फिनिश करूंगी, और ऐसा ही उन्होंने कर दिखाया।
1: And what a moment for India, what a moment for India. Another medal coming in athletics, and this is turning into a day where the Indian contingent is really showing its strength across disciplines. We have already seen the silver medals in squash from Abhay Singh and Anahat Singh, and now Harita adds a bronze in the women's 200 meters. The medals are coming, the performances are coming, and importantly, the momentum is building. And speaking of powerful performances, the medal hopes are right up there in athletics as well, because we are watching live the women's long jump final right now, and India has two strong contenders in the field. Ansi Sojan dominating it right now, currently sitting at the top of the standings with the best jump of 6.49 meters. Her first attempt was 6.49, the second one invalid, the third again came at 6.46, and despite that, Ansi remains at the top. And other contender Shali Singh is currently in fourth position with 6.34 meters. Her first attempt was 6.25. She improved to 6.34 on her second and has matched that distance again with her third attempt. So there is plenty to watch, plenty to cheer for, and plenty still to come.
0: एशियन गेम्स में लगातार उठा पटक का दौर जारी है। डेकाथलॉन की बात करेंगे, पुरुषों की स्पर्धा में जेवलिन थ्रो में भारत के तेजस्विन शंकर ने पांचवां स्थान हासिल कर लिया है। तेजस्विन ने अपने तीन प्रयासों में, जो पहला प्रयास था उनका 46.29, दूसरा प्रयास था 53.37 जो सबसे बेस्ट उनका प्रयास था, इसके बाद हालांकि तीसरे प्रयास में उन्होंने 51.81 मीटर का थ्रो किया, लेकिन उनका जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो था वो 53.37 मीटर रहा है। जेवलिन थ्रो के बाद डेकाथलॉन में तेजस्विन शंकर की चुनौती बताएं तो अंतिम इवेंट 1500 मीटर दौड़ जो वो अभी खेली जा रही है, वहां डेकाथलॉन में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर आकलन के सभी 10 स्पर्धाओं में जो हासिल किए अंकों के आधार पर किया जाता है, वहां फैसला होगा कौन पोडियम पर पहले स्थान पर रहता, कौन दूसरे, कौन तीसरे। हालांकि अभी तेजस्विन शंकर तीसरे स्थान पर बने हुए हैं।
1: And while we continue to follow the result coming in from athletics, there is an update from the men's 200 meters final as well. Animesh Kudur finished fifth, clocking 20.80 seconds in the final and missing the podium. Now let's move on to another men's event happening live right now. That is the men's high jump final with Sarvesh Kushare and Jyoti Shankar representing India. Jyoti Shankar has cleared 2 meters and is currently sitting in 6th position, while Sarvesh remains in contention as the competition continues. Another medal opportunity is very much in focus as the athletic action continues.
0: एक और मेडल इवेंट की बात करते हैं जहां भारत को होप है, भारत को उम्मीद है यहां पर पदक जरूर आएगा, वो है हॉकी। और हॉकी में महिला हॉकी टीम जिस तरह से लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रही है, उसी का एक आधार यहां भी दिखाई दे रहा है। सिंगापुर के खिलाफ भारतीय महिला टीम जिस तरह प्रदर्शन कर रही, 5-0 की एक भारी भरकम लीड ले चुकी, तीसरा जो क्वार्टर वो जारी है। आपको ये भी बता दें भारत ने जो पांचों गोल स्कोर किए वो दूसरे क्वार्टर में गोल किए थे, दूसरे क्वार्टर में उन्होंने 5 गोल स्कोर किया। हालांकि तीसरा क्वार्टर जो है अभी जारी है, वहां पर कोई गोल नहीं हो सका, लेकिन जिस तरह से मजबूती से भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है, लगातार गोल कर रही है, यकीनी तौर पर माना जा रहा है यह भी एक टीम साबित होगी जो पदक की यानी पोडियम पर पहले दूसरे स्थान पर दिखाई दे सकती है।
1: एंड विद दीस अपडेट्स वी आर स्टिल वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, ब्रिंगिंग इन मोर एथलेटिक मैचेस एंड लाइव अपडेट्स टू यू आफ्टर एन आवर। एंड विद दिस इज विदुषी वत्स विद शाहिद आजमी। स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी।

0: 2-0 सेकंड का समय निकालकर तीसरे स्थान पर रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की है। तेजस्विन ने कुल 7,934 अंक हासिल किए और तीसरे स्थान पर रहते हुए जापान के मारियामान ने वहीं पर 8,123 अंक के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि चीन के शिंगहुआ ने 8,012 अंकों के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आपको बता दें 2022 में रजत पदक जीतने वाले यह एशियाई खेलों में यहाँ बता दें तो डेकाथलॉन में उनका लगातार दूसरा पदक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर तेजस्विन अपना जो पदक का रंग बदलने से चूक गए, लेकिन हाँ लगातार दूसरे एशियन गेम्स में उन्होंने पदक जरूर जीता है।
1: Absolutely. Now another big medal moment for India in the women's 3000 meter steeplechase. Parul Chaudhary has done it bronze for India. Parul finished third to secure a brilliant podium finish with Ankita finishing fourth. What a performance from Parul, holding her ground in a grueling final and bringing another athletics medal home for India.
0: बिल्कुल, पारुल ने एशियन गेम्स में जाने से पहले हमसे बातचीत में भी कहा था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूंगी, ऐसा ही कर उन्होंने दिखाया भी, अपना बेस्ट किया उन्होंने। लेकिन यहां पर बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं विदुषी, एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग ने भी कई कमाल किए हैं। रिंग में भारत के लिए शानदार खबर है, भारतीय मुक्केबाज आज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया 3 पदक पक्के कर लिए हैं, अंकुश पंघाल, प्रवीण और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीत लिए, सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। आज मुक्केबाजी के अंतिम मुकाबले का परिणाम बता देते हैं, पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अथापोंग सिथपेक के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए नरेंद्र ने यह मुकाबला आरएससी यानी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम कर लिया, यानी बेहद जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ नरेंद्र ने सेमीफाइनल में जगह बना ली और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर लिया है।
1: Absolutely, as we said, this was some very spectacular last 90 minutes. Now moving across some more athletics results from the events that have taken place today. In the men's 800 meters, Mohammad Afzal finished third in round 1 heat 2, clocking 1 minute 47.37 seconds and advanced to the final. In heat 3, Krishan Kumar also finished third, recording a timing of 1 minute 50.338 seconds. Moving to the women's 100 meters hurdles final, Nandini finished 6th for India, clocking 13.45 seconds. There was no medal for India in this event.
0: विदुषी चलते चलते हॉकी की खबर देते, एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर को 7-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अगले एक घंटे में अब क्या घटेगा जरूर आज की अंतिम अपडेट में 7:30 में बताएंगे। फिलहाल मुझे शाहिद आजमी और मेरे दोस्त विदुषी बस को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
1: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: जादू की बारात।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
2: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छायालोक के सेगमेंट यादों की बारात में। और आज मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों, आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे हमारा स्पॉन्सर कार्यक्रम फार्म टू सिटी। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम यादों की बारात, जी हाँ, छायालोक के सेगमेंट को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, फिल्में सिर्फ पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानियां नहीं होती। कुछ फिल्में हमारे आसपास के जीवन की तस्वीर बन जाती है, तो कुछ फिल्में ऐसी होती है जो अपने गीतों, किरदारों और भावनाओं के साथ हमारी यादों का हिस्सा बन जाती है। और आज की हमारी यादों की बारात में सफर होगा दो अलग अलग दौर की दो खूबसूरत फिल्मों का। जी हाँ, एक है सन 2018 की फिल्म सुई धागा मेड इन इंडिया और दूसरी है सन 1969 की सदाबहार फिल्म आराधना। दोनों फिल्मों का समय अलग है, कहानी का परिवेश अलग है, लेकिन दोनों में इंसानी रिश्ते, संघर्ष और भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म सुई धागा की। शरद कटारिया के निर्देशन में बनी ये फिल्म वर्ष 2018 में प्रदर्शित हुई। फिल्म में वरुण धवन और अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। कहानी है मौजी और ममता की। एक साधारण परिवार से आने वाला मेहनती इंसान है और परिस्थितियां उसे कई तरह के काम करने के लिए मजबूर करती है, लेकिन उसके भीतर अपना कुछ करने और अपने हुनर के सहारे आगे बढ़ने की इच्छा है। और ममता उसके जीवन की साथी ही नहीं बल्कि उसके संघर्ष में उसकी सबसे बड़ी सहयोगी भी बनती है, क्योंकि फिल्म का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, सुई और धागा। एक छोटी सी सुई और धागा कपड़े को जोड़ते हैं और फिल्म भी रिश्तों, मेहनत और सपनों को जोड़ने की कहानी कहती है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें बड़े बड़े सपनों की जगह छोटे छोटे सपनों और रोजमर्रा की जिंदगी को केंद्र में रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस फिल्म से एक प्यारा सा मधुर तराना सुन लेते हैं।

तो दोस्तों फिल्म सुई धागा, जी हाँ, इस कहानी की मेहनत और रोजमर्रा की हलचल को एक अलग अंदाज में सामने लाता है। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़े साधनों की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है अपने हुनर पर भरोसा करने की। सुई धागा इसी सोच को बहुत सहज तरीके से हमारे सामने रखती है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी यादों की बारात थोड़ा पीछे मुड़ेगी, जी हाँ, उस दौर की ओर जब हिंदी सिनेमा के पर्दे पर एक ऐसी फिल्म आई जिसने प्रेम, संगीत और भावनाओं को एक साथ इतनी खूबसूरती से पिरोया कि वह आज भी याद की जाती है। जी हाँ, अब बात होगी फिल्म आराधना की। वर्ष 1969 में प्रदर्शित फिल्म आराधना हिंदी सिनेमा की चर्चित फिल्मों से फिल्मों में शामिल है, क्योंकि फिल्म का निर्देशन शक्ति सामंत ने किया था और मुख्य भूमिकाओं में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नजर आए। फिल्म की कहानी प्रेम, परिवार, परिस्थितियों और त्याग के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन आराधना की पहचान सिर्फ इसकी कहानी तक सीमित नहीं है। इस फिल्म का संगीत और इसके गीत हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में खास स्थान रखते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए, इस फिल्म में जिस प्रकार से राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा के बेहद लोकप्रिय

तो दोस्तों ये धुन जैसे ही कानों में उतरती है सिनेमा का वो सुनहरा दौर आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि महसूस किए जाते थे। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गीत आज भी अपनी मधुरता और रोमांटिक अंदाज के लिए याद किया जाता है। और इस गीत की खास बात यह भी है कि इसे किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी थी, और जबकि संगीत था एसटी बर्मन का और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। तो चलिए दोस्तों, आराधना की इस खूबसूरत याद को आगे बढ़ाते हुए और सुनते हैं एक और सदाबहार नगमा।

राजीव की खूबसूरत वादी में फिल्माया गया यह गीत आज भी अपने फिल्मांकन और संगीत के कारण याद किया जाता है। क्या खूबसूरत दौर था, एक तरफ पहाड़ों की वादियां, चलती हुई ट्रेन और राजेश खन्ना का चुलबुला अंदाज और दूसरी तरफ शर्मिला टैगोर की मुस्कान। यही तो सिनेमा की खूबसूरती है। कई दशक बीत जाते हैं लेकिन कुछ दृश्य और कुछ धुनें समय के साथ पुराने नहीं होते। और आराधना की बात हो और गीत रूप तेरा मस्ताना का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में, जी हाँ, आराधना फिल्म के विषय में बताने की

बाद मैंने आप सभी को यह गीत सुनाया। तो दोस्तों, आज की यादों की बारात में हमने दो अलग अलग दौरों की दो फिल्मों को याद किया। सुई धागा ने हमें बताया कि मेहनत, हुनर और साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश जिंदगी को नई दिशा दे सकती है, और आराधना ने हमें याद दिलाया कि कुछ कहानियां और कुछ गीत समय की सीमाओं से परे चले जाते हैं। एक फिल्म में सुई और धागे से सपनों को आकार देने की कोशिश थी, और दूसरे में गीतों और भावनाओं से बुनी हुई एक यादगार कहानी। यही तो है सिनेमा की खूबसूरती। कहानियां बदलती है, चेहरे बदलते हैं, दौर बदलते हैं, लेकिन अच्छी यादें हमेशा हमारे साथ रहती है। तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला है 7:54, यानी कि घड़ी की सुई बता रही है कि आज का हमारा साथ यहीं तक था। जी हाँ दोस्तों, इसी खूबसूरत याद के साथ आज की यादों की बारात से मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और फिल्म, किसी और गीत और किसी और सुनहरी याद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, लेकिन मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए। बिल्कुल 8:02 से कार्यक्रम यूं ही चलेगा आपकी फरमाइशों पर। तो दोस्तों, अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत, और जाते जाते आप सभी के लिए बिल्कुल लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आराधना का एक और मधुर तराना छोड़े जाती हूँ। तो दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

107 FM रेनबो पर मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति, लेकर आई हूँ कार्यक्रम छाया लोग। संडे की रात है, वक्त है 8:39 और 9 सेकेंड। एक अलग ही सस्पेंस है ना। घर घर में इस वक्त दो ही तरह की आवाज आ रही होगी, एक तरफ किचन से छौंक की खुशबू, साथ में प्रेशर कुकर की सीटी, या फिर डाइनिंग टेबल पर सवाल गूंज रहा होगा, अरे खाना लगा दूं क्या। और दूसरी तरफ सोफे के कोने में दबे छिपे कुछ लोग फोन में ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप स्क्रॉल कर रहे होंगे, इस उम्मीद से कि चलो संडे की आखिरी मील तो बाहर से ही मंगा लिया जाए। लेकिन इस वक्त एक अनचाहा मेहमान भी चुपके से आपके घर में घुस चुका है। जी हाँ, मैं नहीं, मंडे फीवर। यस, सच बताइएगा किस किस के दिमाग में कल सुबह का अलार्म सेट करने की टेंशन शुरू हो चुकी है, या फिर ये सोच रहे होंगे कपड़े प्रेस है कि नहीं, ऑफिस का वह अधूरा काम, या कॉलेज का वह प्रोजेक्ट, या लेकिन सारे जो खौफनाक जो ख्याल हैं कि कल सुबह 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, किस किस के दिमाग में ये मंडे का जो है भरा हुआ है आपके दिमाग में, बताइएगा। आप हम तक पहुंचेंगे अपनी फरमाइश लेकर, साथ में ये ज़रूर बताइएगा। हमारा नंबर है 2213-1341। जब तक आप हमसे जुड़ते हैं तो ये गाना तो बनता है।

हमारे पास फरमाइश आ चुकी है, फरमाइश करने वाली है सुप्रिया, और उन्होंने फ़ोन किया था हावड़ा से, और उन्होंने सुनना चाहता है एक दूजे के लिए फिल्म से लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत। तो आइए उनकी फरमाइश पर हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: 107 FM ब्रेन वो पर देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन है। हेलो
1: हेलो नमस्ते
0: नमस्ते, बताइए कौन बोल रहे हैं आप।
1: मैं शुभजीत बोल रहा हूँ बिलगुरिया से।
0: हाँ जी, आपकी आवाज बहुत इको हो रही है, थोड़ा से पीछे कर लीजिए रेडियो से।
1: हाँ
0: ओके, हाँ जी बताइए आप क्या कहना चाहेंगे।
1: आज मुझे
0: अभी भी आपकी आवाज बहुत इको कर रही है, थोड़ा पीछे हो जाइए।
1: रेडियो सर एक्चुअली बंद है शायद, फिर भी
0: ओके बताइए।
1: मासूम फिल्म का गाना तुझसे नाराज नहीं जिंदगी।
0: ओके चलिए मैं ये गीत जरूर सुनाऊंगी आपको। तो क्या आपको भी संडे फीवर है, सॉरी मंडे फीवर है आपको भी?
1: बहुत बहुत, मतलब मंडे बोलने से मंडे ब्लूज जो हमेशा सबको होती है, क्योंकि कल से फिर 2 दिन का थोड़ा आराम मिला।
0: हाँ जी।
1: लेकिन ये जो ब्लूज है ना, ये शुरू शायद हो जाता है संडे आफ्टरनून के बाद से। तब लगता है कि अरे दिन इतना जल्दी गुजर गया, 2 दिन पता नहीं क्या हो गया। और सबसे खुशी की बात होती है जैसे कि जब लोग मतलब पहला दिन में जब सैलरी मिलता है पहला तारीख को, उसकी खुशी लगता है हर शुक्रवार को रात को शाम को जब ऑफिस से आ जाते हैं। तो ये सबके लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग नौकरी करते हैं वैसा नहीं, जो बिजनेस भी करते हैं, सपोज अगर संडे को बंद है तो उनका पार्टी हो जाता है शुरू शनिवार के दिन शाम से।
0: एकदम चलिए सही, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने तो अपनी बात रखी, और मैं आप सभी से यही कहूँगी कि संडे को अलविदा कहने का सबसे अच्छा तरीका उदास होना नहीं, बल्कि इस बात का शुक्रिया अदा करना है कि हमें सांस लेने और खुद को समेटने का एक दिन मिला है ना। तो बस घड़ी को देखना बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस इतवार की रात का इत्मीनान से इसको महसूस करिए। इसी के साथ प्रीति आप सभी से कहेगी टाटा बाय बाय, और आंख बंद करके इस खूबसूरत से गीत को सुनिए और प्रीति को कहिए टाटा बाय बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।
2: नमस्कार, द आकाशवाणी पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट हमारी वो सीरीज है जिसमें हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तित्वों से करवाते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, हम सबके लिए रोल मॉडल भी हैं और उनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट श्रीमती कुलजीत कौर जी, उनका करते हैं बहुत बहुत स्वागत। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम
3: बहुत में। बहुत शुक्रिया तपस्या, और बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे लफ्ज मेरे लिए बोलने के लिए।
2: नहीं नहीं मैम, सच में
3: सो मच।
2: आप मुझे मालूम है जब मेरी आपसे बातचीत शुरू हुई तो इतना कुछ आपके बारे में बात करने के लिए है, जो आपकी लाइफ जर्नी है, जो आपका सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिर चाहे वो बतौर टीचर लेक्चरर हो और उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और फिर प्रेसिडेंट के रूप में, तो बहुत सी बातें आपसे करनी है। लेकिन शुरुआत अगर मैम हम इस तरह से कि फलास्ट 10-15 ईयर्स जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, मोटे तौर पे क्या कहेंगे सबसे पहले?
3: देखो, औरतों की जो हालत पार्टीशन से अगर स्टार्ट करें और आज के दिन में हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क है। इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है सोशल एटीट्यूड में औरतों की तरफ, जैसे हम देखते हैं कि देख के आदमी हैरान रह जाता है। हर एक सरकार ने जो है औरतों को एम्पावर करने के लिए बहुत काम किए हैं, बड़े रूल्स भी पास किए हैं, लेकिन अभी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है इन्होंने इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, जिसके कारण इनका इम्पैक्ट औरतों के ऊपर बहुत है और समाज के ऊपर भी बहुत है।
2: जी, ये बहुत अच्छी बात आपने मैम बोली कि कॉमन मासेस में जब खास तौर से औरतों की हम बात करते हैं तो एक होता है कि जो हमारे गांव में रूरल एरियाज में जो महिलाएं हैं उनके लिए स्पेसिफिकली कुछ इस तरह की गवर्नमेंट की स्कीम्स का आना वो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, हमें याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये बात न केवल कही थी मैम, ये भी कहा था कि कोई प्रधानमंत्री शायद ऐसा हुआ नहीं होगा जो यहाँ से टॉयलेट की बात करेगा,
3: बिल्कुल
2: शौच की बात करेगा, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट इशू था मैम, क्या कहेंगे आप?
3: नहीं नहीं, ये एक बहुत बहुत बड़ा स्टेप था जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश के लिए लिया, और वाकई उनकी बात से बिल्कुल ठीक थी कि कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी लीडर किसी कंट्री का ऐसे फोरम से खड़े होकर टॉयलेट्स की बात नहीं करेगा। पर उन्होंने ये सोचा कि जमीन पर एट द ग्रास रूट लेवल औरतों की ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। मुझे भी याद है कि पंजाब में कई बार शाम के टाइम आप देखो तो औरतें जो थी वो पर्दा करके अपना जो है टॉयलेट्स के लिए गांव में, फसलों में, फार्म हाउसेस में वहां पर आया करती थी, और कई बार इतना बुरा लगता था कि उनको घूंघट निकालने पड़ते थे, और ट्रक्स वगैरह दूर से आते थे तो ट्रक्स की लाइट उनके ऊपर जाती थी, दे यूज टू फील सो एम्बेरस्ड, उनको बहुत बुरा लगता था। तो प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को समझा और इसकी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी।

0: पूरे देश में ये अवेयरनेस क्रिएट करी कि लेडीज के लिए सेपरेट टॉयलेट होने जरूरी हैं। बनवाए भी उन्होंने, पर ये जो अवेयरनेस आ गई, लोगों को ये फीलिंग हुई कि औरतों की इज्जत के लिए, औरतों की सेफ्टी के लिए टॉयलेट्स होने बहुत जरूरी हैं। आप आज देखिए, हर गांव में देखिए, हर शहर में देखिए, जगह जगह औरतों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स बने हैं, जिससे औरतों को, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, जिससे औरतों को बहुत कंफर्टेबल भी फील करता है और वो सोचती हैं कि उनके रिस्पेक्ट के बारे में, इज्जत के बारे में इतने ऊपर लेवल से, प्रधानमंत्री के लेवल से किसी ने उसके बारे में सोचा है। तो इसके लिए औरतें काफी शुक्रमंद भी हैं, थैंक्स भी करती हैं।
1: जी जी मैम, सोचा भी था, उसके लिए बाकायदा फंड्स एलोकेट किए गए और हर घर में जो नए घर बने उसमें भी ये सुनिश्चित किया गया कि सबके लिए अलग से टॉयलेट जरूरी है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और इट्स नॉट ओनली अबाउट मैम टॉयलेट एंड सैनिटेशन, उसमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते थे महिलाओं के साथ में दिन ढलने के बाद में, उसमें भी बहुत रिलीफ मिला है और बहुत महिलाओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत आशीर्वाद और दुआएं भी दी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से किया है, क्योंकि ये औरतों के बारे में, जैसे मैंने कहा कि इतने सालों से, 70 सालों से किसी ने नहीं सोचा, ये खाली उसकी हेल्थ की सेफ्टी नहीं थी, ये औरत की एम्पावरमेंट थी, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, डिग्निटी थी, वो सबके लिए बहुत जरूरी था कि औरत जो पर्दा चाहती है वो अपने प्राइवेसी है, क्योंकि हर एक इंसान की प्राइवेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉयलेट्स इंट्रोड्यूस करने से, उसके लिए स्पेशल फंडिंग करने और ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि घरों में औरतों के लिए टॉयलेट्स होने बहुत जरूरी है, ये अवेयरनेस के साथ लोगों में बहुत बदलाव आया, जिससे औरतों की डिग्निटी जो है उनको मिली, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट मिली, सोशली आल्सो लोगों को ये फीलिंग हुई कि औरत की इज्जत भी, प्राइवेसी भी है, जिसकी हमें इज्जत करनी है। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने औरतों के लिए, यंग गर्ल्स के लिए। और उससे क्या होता था कि जब यंग गर्ल्स रात के टाइम, शाम के टाइम वो अपने आप को रिलीव करने के लिए जाया करती थी खेतों में, तो कई बार जो है वो फिजिकल असॉल्ट भी हो जाते थे, रेप केसेस भी हो जाया करते थे, अंधेरे में कुछ समझ नहीं आती थी, पर इस उस स्टेप से औरत की डिग्निटी तो हुई, प्राइवेसी भी हुई, औरत की सिक्योरिटी भी हुई इसके कारण।
1: जी,
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: मैम, मेंटल अगर आप पीस की बात करें तो कितना रिलैक्सेशन है कि अब आपको जंगल में नहीं जाना, जहाँ पे स्नेक्स निकल आते थे, बहुत सारे एनिमल्स आसपास होते थे खेतों में और नॉल। इसमें हम थोड़ा सा इसको और हम और आगे लेके चलें तो सैनिटरी पैड्स को लेके भी कभी भी स्कूल्स में बच्चियां जो है घर में अपने पेरेंट्स, स्पेशली मदर के साथ भी ओपन अप नहीं हो पाती थी, बट जिस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स आई, स्कूल्स में अवेलेबल होने लगे सब चीजें, तो उनको उसकी यूटिलिटी क्या है, यूजेज क्या है, वो भी समझ में आया और उनकी अपनी हाइजीन को लेके बहुत चेंजेस उसमें आए। तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन की जब हम बात करते हैं और युवा भारत की बात करते हैं, उसमें 50% अगर हम देखें तो जो गर्ल चाइल्ड की बात होती है, तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप उसमें अगर हम देखें तो।
0: तपस्या जी, आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि इसकी जो रिपरकशन, इसका इफेक्ट लड़कियों की जिंदगी पर बहुत पड़ता था। जैसे ही उनके पीरियड्स आने शुरू होते थे, महीने आने शुरू होते थे, तो लड़कियों का स्कूल जाना बंद कर दिया जाता था। ये दोनों कनेक्टेड चीजें हैं, क्योंकि अब लड़कियों के सेपरेट टॉयलेट हुए, अगर लड़कियां स्कूल जाती हैं, उनको पीरियड्स आते हैं, तो उस टाइम प्राइवेटली जाके अपने आप की जो सफाई है बॉडी की, उसको मेंटेन कर सकती हैं। दूसरा, ये जो उनको सैनिटरी पैड्स मिलने शुरू हो गए, उससे उनको बड़ा कंफर्ट हो गया। पहले क्या था कि सैनिटरी पैड्स इतने ओपनली ना तो बाजार में मिलते थे, ना कोई इसकी बात करता था। ये चीज लड़कियां जब भी थोड़ी सी इस हालात में, इस सिचुएशन में आती थी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, तो लड़कियों को ऐसे लगता था कि जैसे कोई वो पाप कर रही है, कोई बुरा कार्य कर रहे हैं, तो ये सारी कदमों से उनको बड़ा कंफर्ट फील हुआ है कि ये नेचुरल डेवलपमेंट है। जब लड़कियां एडोलेसेंट होती हैं, बड़ी होती हैं, युवा होती हैं, तो पीरियड्स आने ये नेचुरल है, उसको संभालने के लिए उनको सैनिटरी पैड्स की जरूरत है। अभी बच्चियों को स्कूल में भी सैनिटरी पैड्स मिल रहे हैं और उसकी वेंडिंग मशीन्स भी आ रही हैं। मैं किसी मेंबर पार्लियामेंट उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे उन्होंने लड़कियों के लिए जगह जगह वेंडिंग मशीन्स, उन्होंने छोटे छोटे जो सड़कों पर ढाबे हैं वहां पर भी वेंडिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस करी हैं, ताकि लड़कियां आराम से जाके बाजार में, अगर वो हिचकिचाती हैं सैनिटरी पैड्स के लिए या

0: वो अफोर्ड नहीं कर सकती तो वेंडिंग मशीन से जाके वो सैनिटरी पैड्स ले सकती हैं। अब उसके ऊपर खुल के भी बात होती है। हम भी जब ऐसी मीटिंग्स में जाते हैं, लड़कियों के साथ बात करते हैं, एडोलेसेंट प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें भी हम उनको खुल के फिर बताते हैं, लड़कियां इसके बारे में झिझकती नहीं है, सवाल भी पूछती हैं और कंफर्टेबल भी फील करती हैं। तो ये बड़े ही अच्छे स्टेप हैं औरत को एम्पावर करने के लिए और औरत की डिग्निटी के लिए। इससे औरतों की जो इज्जत है वो समाज में क्या उनकी अपनी नजरों में भी बढ़ती है। अब ये दोनों कनेक्टेड स्टेप हो गए, टॉयलेट भी हो गया, सैनिटरी पैड्स भी हो गए, प्राइवेसी हो गई, डिग्निटी भी हो गई। अब उनको ये हम समझाते हैं कि मेंस्ट्रुएशन उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब उन्होंने मदर्स बननी है, बच्चे प्रोड्यूस करने हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो। तो इससे लड़कियों की नॉलेज भी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और इज्जत बढ़ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज।
1: और मैम वो वोकल हो गए हैं सब लोग, तो हम जो बात कर रहे हैं जैसे आपने अभी कहा भी फिजिकल मेंटल हेल्थ के साथ साथ अगर हम मेन फोक की बात करें तो उनका भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन या थोड़ा सा एक ईजी चीजें हो रही है डिस्कस करने के लिए हासिल, ये बहुत अच्छी बात है।
0: क्योंकि ऐसे होता है जो बात आप खुल के करोगे तो वो कॉमन कम्युनिकेशन में आ जाती है। जिस बात को आप कितना छिपाते हो उतनी बात के लिए आपको लगता है पता है ये गलत बात है, इसको नहीं बोलना। अब ओपनली बोलने लग गए हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में, सैनिटरी पैड्स के बारे में, तो ऐसे लगता है कि ये नेचुरल डेवलपमेंट बॉडी में है।
1: मैम स्कीम्स की बात चल निकली है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। और इसमें अभी आपने बात की कि स्कूल्स में बच्चों को अवेलेबल हो रहा है, और सबसे अच्छी बात ये भी है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्कशॉप्स हो रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं, हमारे आकाशवाणी से, दूरदर्शन से, बहुत जगहों से फिल्म भी बन रही है, आपने खुद कहा। इसमें मैम खासतौर से बेटियों की पढ़ाई की जब बात आती है तो ये कड़ियां कहीं जुड़ती हैं जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हम बात करते हैं।
0: मैंने आपको ये बोला ना कि जब भी बच्चों को लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती थी तो लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती थी। आप अगर अपना पुराना निकाल के देखिए जो आपका डाटा है तो आपको उससे पता चलेगा कि ज्यादा लड़कियां जो है वो सातवीं छठवीं क्लास तक पढ़ती थी। जैसे मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती थी माँ बाप उनको घर बिठा लेते थे। तो अब जो है उनको जब भी अवेयरनेस हो गई है, सोसाइटी उसमें ओपनली बात करती है, उनको फैसिलिटेट कर रही है, फैसिलिटीज उनको मिल रही है उसके लिए, तो वो ओपनली जो है वो स्कूल में एजुकेशन भी कंटिन्यू कर सकती हैं और आगे अपनी पढ़ाई भी। आगे ये बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक अब सबको पता है नेचुरल प्रोसेस है और उसके लिए स्कूल वाले भी हेल्प कर रहे हैं और उसकी सोल्यूशन जो है ऑटोमेटिकली निकल के आ गई है जगह जगह। जैसे मैंने कहा वेंडिंग मशीन्स भी लग गई हैं।
1: जी इसमें थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगी बताएं कि ये जो माइंडसेट की प्रॉब्लम थी ये तो वो एंगल तो हुआ, लेकिन इसमें अब लड़कियां पढ़ रही हैं, अच्छी एजुकेशन लेके सेल्फ डिपेंडेंट बन रही हैं, करियर बना रही हैं अच्छे से, तो पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सिर्फ बेटे हमारा सहारा नहीं बेटियां भी हमारा सहारा हो सकती हैं। तो जो पहले बच्चियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता था या पैदा होने के साथ ही, उसमें भी जो परसेप्शन है, माइंडसेट है, आपको लगता है उसमें भी चेंज आया है?
0: बहुत ज्यादा चेंज आया है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आज से 50 साल पहले की आप बात करें और आज की बात करें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। हरियाणा में हमने एक विलेज को अडॉप्ट किया, वहां की औरतें जब भी पहली दफा हम लोग गए तो उन्होंने इतने लंबे लंबे घूंघट निकाले हुए थे, लेकिन हम लोगों ने जाकर उनके साथ जब मिंगली करी, उनको कॉन्फिडेंस दिया, तो एक साल के बाद जब भी हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई तो उन लेडीज ने स्टेज पे डांस किया।
1: क्या बात है।
0: सो इससे मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि औरतों में कितनी एम्पावरमेंट आ गई है। वो इसलिए आ गई है क्योंकि पॉलिटिकली गवर्नमेंट का भी उनको बहुत सहारा है, बड़ी सपोर्ट है, नई नई स्कीम्स बन रही हैं जिससे उनको पता चलता है कि हमारे लिए सरकार कितना काम कर रही है। वो औरतों को बहुत कॉन्फिडेंस देती है और उसके कारण लड़कियों की एजुकेशन फर्दर डेवलपमेंट भी बहुत हो रही है। अभी रिसेंटली हमारी मीटिंग थी चेन्नई में, तो वहां पर गवर्नर मिस्टर रवि आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि वो आईआईटी में गए वहां पर सेरेमनी के लिए, तो फ्रंट रो में सब लड़कियां बैठी हुई थी, दे वर गोल्ड मेडलिस्ट। सो हमें इतनी खुशी हुई कि लड़कियां देखो कितना आगे बढ़ रही हैं। और पेरेंट्स का आगे जो होता था एकदम माइंड सेट के लड़की पैदा हुई तो दुखी हो गए, बहू को घर से निकाल दिया। अब ऐसा नहीं है, अब पेरेंट्स को ये प्राइड फील होता है कि मेरी लड़की कितनी लायक है, मेरी लड़की कितना अचीव कर रही है। इसलिए जो वो माइंड सेट था जो जेंट्स का, पेरेंट्स का, इन लॉज का, उसमें बहुत बड़ी चेंज आई है, जिसका जो मैं कहती हूँ कि श्रेय सरकार को भी जाता है। एक तो ओपनली उन्होंने इसके बारे में बात करनी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये स्कीम स्टार्ट करी, लड़कियों के लिए स्कूल स्टार्ट कर दिए, स्कॉलरशिप्स करे, फ्री यूनिफॉर्म्स करिए, फ्री बुक्स करी, तो पेरेंट्स के ऊपर अब कोई भी वैसा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। और लड़कियां जितनी पढ़ाई, देखो स्टैंड में कितने परसेंट इन्होंने सीट्स लड़कियों के लिए बढ़ा दी, तो लड़कियां कैसे आगे बढ़ रही हैं।

0: हैं, पायलट्स बन रही हैं, अब तो आर्मी में भी लड़कियों की जो
1: फ्लाइट वो,
0: हाँ, कर दी है इतने। अब रिसेंटली एक फ्लाइट चली जिसमें सारी लड़कियां ही पायलट्स थी और वो ड्यूटी पर थी, तो दैट शोज के कितनी चेंज आ चुकी है लड़कियों में, कितनी एम्पावरमेंट हो गई है, एंड दे आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट दिस फैक्ट कि हम आदमियों से किसी तरह से भी कम नहीं है। तो चेंज तो बहुत है और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि जो

0: ओल्ड एज में हमारी लड़कियां जो है वो हमें लुक आफ्टर कर सकती हैं। अब हमारा एक केस था, उसने मैं किसी से बात कर रही थी, शी इज द ओनली डॉटर, उसने कहा कि मेरी शादी की ये कंडीशन थी कि आई विल लुक आफ्टर माय हस्बैंड्स पेरेंट्स एंड ही शुड लुक आफ्टर माय पेरेंट्स। तो कहने लगी एक घर में ग्राउंड फ्लोर पे मेरे इन-लॉज हैं, फर्स्ट फ्लोर में मेरे पेरेंट्स हैं, और इतनी अच्छी ट्यूनिंग है, इतनी अच्छी एडजस्टमेंट है, पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट करा और इन-लॉज ने भी करा कि डॉटर का भी फर्ज है अपने पेरेंट्स की केयर करना। सो इसलिए सोशल चेंज तो बहुत अच्छे से आ रही है, जो कि लड़कियों के फेवर में, सोसाइटी के फेवर में आ रही है, और हम इसको वेलकम करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है इस बार।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: जी, आप बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, मैम, तो अवेयरनेस भी आ रही है, लड़कियां अप्रूव भी कर रही हैं और चीजें सब एस्टेब्लिश भी हो रही हैं सोसाइटी में। इसमें अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम देखें तो बहुत सारी और स्कीम्स भी हैं। मैं फिर से एक बार अगर बात करती हूँ ग्रामीण जो महिलाएं रूरल एरियाज में जो है, तो उसमें उज्ज्वला योजना, मैम, फिर मैं कहूँ की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोची वो शायद ही किसी ने सोची होगी, धुएं से उनको कितनी दिक्कत होती है और कितनी उनको चूल्हा जलाने से पहले तैयारी करनी पड़ती है और मुश्किल होती थी। क्या कहेंगे मैम इसमें?
0: जो भी स्कीम सब आपने टॉयलेट से स्टार्ट करा जी। आपने उसके बाद ने ये फ्री पैड्स की बात करी जी। सारी चीज जो है औरत की अच्छी हेल्थ की तरफ लेके जाती हैं। जब भी वो कोयला जलाती थी, लकड़ी जलाती थी, वो जो सारा धुआं उनके अंदर जाता था, तो मोस्ट ऑफ द वुमेन वो सफर करती थी अस्थमा की उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि लकड़ी जलाने का वो सारा धुआं उनके अंदर जाता था जो उनकी हेल्थ पर इम्पैक्ट करता था। अब ये जो सारी स्कीम्स है, अगर आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो औरत की जहां डिग्निटी भी हुई, औरत जो है वहां इंडिपेंडेंट भी हुई। अब देखो उज्ज्वला में गैस आ गई तो औरत किचन में से कितना फ्री टाइम उसको मिलता है
3: जी।
0: और सबसे बड़ा इम्पैक्ट, हर एक स्टेप का इम्पैक्ट उसकी हेल्थ पर कितना हो रहा है। अगर आपकी लड़कियां हेल्दी होंगी, अगर आपकी वुमेन हेल्दी होंगी, फ्यूचर जनरेशन ऑटोमेटिकली हेल्दी होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा गहरी सोच का रिजल्ट है कि औरतों को इतना एम्पावर कर दिया गया, औरतों की पोजिशन इतनी ज्यादा इंप्रूव कर दी गई, तभी तो लड़कियां आज इतने कॉन्फिडेंस से चलती हैं, कॉन्फिडेंस से पढ़ती हैं, काम करती हैं। एवरीवेयर यू कैन सी द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो हमें देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारा फ्यूचर जो है वो कितने सेफ हैंड्स में है। उसके बावजूद भी सरकार ने इतनी स्कीम्स और भी चलाई हैं औरतों को फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए भी, और आप अगर उसके बारे में भी कुछ जानना चाहें तो मैं उसके बारे में भी आपको
3: बिल्कुल मैम
0: बता सकती हूँ।
3: फाइनेंशियली एम्पावर होने की बात की है तो एक मैम माँ होना हमेशा से हमारे यहाँ कहा जाता है कि सौभाग्य की बात है, कि वो ईश्वर का दूसरा रूप हो जाती है माँ जब बन जाती है तो। लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें ये होती थी कि मैटरनिटी लीव लेंगी और वो उसमें फिर घर बैठना होगा, फिर वो एक कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है कि आप घर में हैं और आपको कुछ और फाइनेंशियल हेल्प नहीं है। लेकिन ये जो पेड मैटरनिटी का जो कॉन्सेप्ट आया मैम, इसने बहुत हेल्प किया,
0: बहुत ज्यादा। मैंने आपको ये कहा कि जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं वुमेन को पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अपने मद्देनजर रख के सरकार बना रही है, औरतों को बहुत फायदा हो रहा है उससे। अभी आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करी, अब जो नई चीज जो मेरे को बड़ी इम्पैक्ट करी, दैट इज द ड्रोन दीदी
3: जी।
0: आप इमेजिन कर सकते थे कि औरतें जो है वो ड्रोन्स बनाएंगी, ड्रोन्स चलाएंगी अपनी एग्रीकल्चर, अपने फार्म हाउसेस की और सब चीजों की, वो वहां पर जो है वो उसके स्क्रूटनाइज कर सकती हैं, सुपरवाइज कर सकती हैं ड्रोन के जरिए। ये इतनी एम्पावरमेंट है कि आपने जो आम, जैसे आप गांव की औरतों की बात कर रही हैं, उनको आपने आकाश में उड़ा दिया है। तो ड्रोन्स के साथ जो ड्रोन दीदी स्कीम है, सब स्कीम्स भी बहुत अच्छी हैं, ये स्कीम जो है ये तो बड़ी रेवोल्यूशनरी स्कीम है। बाकी सबसे बड़ी जो चेंज आई है, मैं ये सोचती हूँ, स्कीम तो पहले भी कुछ कुछ हुआ करती थी पर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अब ये हो गया है कि सरकार ने उसके स्टेप्स बना लिए हैं। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट उनको देते हैं तो खाली पैसा ही नहीं देते, उसके बाद सरकार सोचती है कि अगर हमने फाइनेंशियल हेल्प करी है तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने इंस्टीट्यूशंस खोले हैं। जनधन जो आपकी वो स्कीम है उसमें जीरो से भी आप अकाउंट खोल सकते हो डायरेक्टली, देयर इज नो मिडल मैन। आपका पैसा जो गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है, जो आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो, वो डायरेक्ट आपका पैसा

0: बैंक में आता है और देयर इज नो मिडिल मैन. आप सीधा जाके बैंक से निकलवाइए. एक तो औरत जब बैंक में जाके विड्रॉ करती है, उसके हाथ में जब पैसा आता है, आई नो कि वो क्या फीलिंग होती है. जब मैं जॉब करती थी तभी तो चेक्स वगैरह नहीं, कैश ही मिला करता था. जब वो आके कैशियर हाथ में कैश पकड़ाते थे तो आपको इतनी एलिवेशन की फीलिंग होती है, आप इतना एम्पावर फील करते हो कि ये पैसा मेरा है, मेरा हक है इसके ऊपर, मुझे किसी ने ये दान नहीं दिया. पहले ये होता था कि उस टाइम में औरत की स्लेवली इसलिए भी थी कि हर चीज के लिए वो आदमी पे डिपेंडेंट थी. उसको 10 रुपए भी चाहिए तो आदमी का आगे हाथ फैलाती थी. कई बार वो हिचकिचा जाती थी, हेजिटेंट हो जाती थी कि मैं हर वक्त आदमी से क्यों मांगू. अभी ये जो बैंक का हो गया, उसका इंडिपेंडेंट, उसके अकाउंट हो गए हैं, उसके नाम पे पैसे जमा है, उसको पैसा डायरेक्टली मिल रहा है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, वो एंटरप्रेन्योर बन सकती है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसके लिए स्किल ट्रेनिंग का रखा है. स्किल ट्रेनिंग के बाद ये नहीं कि आपको पैसा दे दिया, ट्रेनिंग दे दी, फिर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, सारी डिजिटाइजेशन हो रही है कि आप क्या कर रहे हो और कहां कहां आपको हेल्प की जरूरत है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है. और ये जो मॉनिटरिंग हो रही है उससे जो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है ना, अगर हमने आपको पैसा दिया, आप लोगों को नहीं दे रहे, लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे, तो आपका उसी में आ जाएगा जब आपकी वहां पर रिपोर्ट डिजिटाइजेशन में आएगी, क्योंकि मॉनिटरिंग हो रही है सब, तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कहाँ कहाँ फेलियर है. सो ये स्कीम्स की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो डिजिटाइजेशन है, मॉनिटरिंग हो रही है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है. तो बहुत थॉटफुली, बड़ी इंटेलिजेंटली ये सारी स्कीम्स बनाई हैं जो कि औरतों की पोजीशन को बहुत ही ऊपर कर रही हैं, उनकी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल कर रही हैं, लड़कियों को एजुकेटेड कर रही हैं, लड़कियों को एम्पावर कर रही हैं, और ये सोसाइटी में अवेयरनेस आती है कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है.
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम. पूरा जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ज्यादा अकाउंटेबल हो रहा है. आपने जो अभी ड्रोन दीदी की बात की मैम, उसमें हम इमेजिन करके बहुत अच्छा लगता है कि गाँव कि एक लड़की या महिला वो ये फील करती है कि अब मैं साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ गई हूँ, मैं मॉडर्न टाइम्स में हूँ. तो पहले तो बस चौका चूल्हा करो यही बोल के उनको चुप करा दिया जाता था.
0: ये बड़ी हद है, थोड़े बहुत मतलब टीचिंग ट्रेन, टीचर्स ट्रेनिंग करा. अब एवेन्यू सारे ओपन हो गए हैं. जैसे मैंने कहा पायलट्स भी हैं, इंडिपेंडेंट सब लेडीज पायलट की फ्लाइट हुई, आर्मी में देखो जा रही है, वहां पर उनकी प्रमोशंस का वही हाल है जो मतलब जो बाकी जेंट्स का है. नहीं तो पहले था कि औरतें पोजीशन के बाद जो उनकी प्रमोशंस नहीं हो सकती, खाली डॉक्टर्स ही थी. पर अब ऐसी वो सारी जो चीजें बंदिशें खत्म कर दी. ऐसे लगता है मेरे को, कई बार ऐसा लगता है कि औरत आजाद होकर पंछी की तरह उड़ना शुरू हो गई आकाश में. इतनी ज्यादा फ्रीडम आ रही है और चारों तरफ आप देखते हो औरतें. इवन जब 26 जनवरी को इस पर देखा ना कि ओनली विमेन की जो ब्रिगेड जा रही थी, कितनी खुशी होती है कि इस मुल्क में औरतें कितनी एम्पावर हैं, कितनी कॉन्फिडेंट हो रही हैं और कितनी खुशी फैल. औरत अगर पढ़ी लिखी है, यू एजुकेट वुमेन, यू एजुकेट द होल फैमिली, यू एम्पावर ए वुमेन, यू एम्पावर द होल फैमिली. सो ये मुद्दा बहुत अच्छा है. पहले हम खाली आदमी पर कंसंट्रेट करते थे, लड़कों की एजुकेशन, लड़कों की एम्पावरमेंट, लड़कों का करियर. अब वो चीज शिफ्ट होके लड़कियों पर भी आ गई है, जिससे समाज का, फैमिली का, क्या पूरे देश का सुधार हम देख भी रहे हैं कि लड़कियां कितने कॉन्फिडेंस से मूव करती हैं, इंडिपेंडेंटली मूव. कल मैं पठानकोट से आ रही थी तो मैंने एयरपोर्ट पे लड़कियों को देखा, 6 लड़कियां वहां खड़ी थी, तो देखने में देवर लुकिंग सो गुड एंड सो कॉन्फिडेंट. तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप स्पोर्ट्स के लिए आए थे? दे सेड नहीं मैडम, हम BSF हमने ज्वाइन करा हम ट्रेनिंग से. आई फील सो गुड. मैंने उनको बिल्कुल आशीर्वाद दिया. मैंने कहा मेरे को इतना अच्छा लगा कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जा रही हैं और अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए अब ट्रेनिंग के लिए यहाँ आई. सो दीज आर द स्टेप्स वो हमको भी इतनी फीलिंग ऑफ एलिवेशन देते हैं, क्योंकि हमने वो जमाना भी देखा जहाँ औरतें पर्दे से बाहर नहीं निकल सकती थी, लड़कियों की एजुकेशन नहीं थी. लड़की पैदा होती थी तो घर में मातम छा जाता था कि लड़की आ गई और दहेज के कारण. अभी डॉरी के लिए भी गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं इसके खिलाफ. तो ये सारी चीजें धीरे धीरे धीरे क्या, मैं तो कहती हूँ काफी कुछ हो गया है और आगे भी होता जाएगा. एक बार औरत ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया तो पूरा देश ही आगे बढ़ेगा. बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, बहुत अच्छा. ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है, आप एक एक गाड़ी के पीछे देखो, एक एक ट्रक के पीछे. सो दिस मींस दैट मैसेज इज गोइंग टू द विलेजेस. मतलब नीचे तक वो जो है मैसेज जा रहा है कि बेटी के खिलाफ नहीं बोलना है, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है और बेटी को एम्पावर करना है. तो दिस इज वेरी गुड मैसेज, बहुत अच्छा.
1: आपने अभी हरियाणा का जिक्र किया तो मैम

0: बहुत से स्टेट्स में हमने देखा कि जो पैट्रियार्कल सेटअप है, जो एक सिस्टम हमेशा से रहा है, उसमें अभी भी कुछ फादर्स हैं या घर के जो पुरुष हैं उनको थोड़ा सा कहीं एक डाउट रहता है या वो एक तरह का स्टिग्मा अभी भी है. तो वहां पे हमने देखा है कि जो माएं हैं, बहनें, वो आगे आती हैं उनको डिफेंड करने के लिए कि नहीं, हम पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे और करियर में इनको अपनी तरह से ऑप्ट करने देंगे, फ्रीडम देंगे. तो ये भी एक माइंडसेट में चेंज जो हम देख रहे हैं.
1: बहुत चेंज आ रही है.
0: आपने जनधन की बात की तो बड़ी क्यूट सी चीजें जानने सुनने को मैं मिलती रही कि वो महिलाएं जो घर में चावल के डिब्बे में पहले या छुपा छुपा के पैसे रखती थी, अब दे हैव देयर ओन अकाउंट्स और वहां जाके अपनी तरह से एक्सेस कर सकती हैं. और वो फिगर्स देख के जो हमें एक फील आता है उससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि और सेविंग करनी है.
1: बिल्कुल नहीं, दूसरा मनी को हैंडल करना.
0: हाँ जी,
1: दैट इटसेल्फ गिव्स यू सो मच पावर नो कि मैं पैसे को हैंडल कर सकती हूँ, ये पैसा मेरा है.
0: जी,
1: ये साइकोलॉजी है ना, ये शायद लोगों के लिए समझनी मुश्किल होगी, पर हम लेडीज को ये पता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है. औरतें कितने अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करती हैं, एम्पावर्ड फील करती हैं, क्योंकि उसके हाथ में पैसा है और उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है. अल्टीमेटली वही जब मैंने जैसा से स्टार्ट करा था, इट अगेन टॉक्स अबाउट द डिग्निटी ऑफ वुमन. औरत को आपने इतनी इज्जत दे दी है कि वो हाथ नहीं फैला रही है, वो खुद कमा रही है, वो छोटे छोटे जो अपने काम भी करती है उससे भी, और अगर वो गवर्नमेंट जॉब करती है, जैसे आपने पहले भी कहा मैटर्निटी लीव इंक्लूड कर दी इतनी ज्यादा, उसके बाद पेटर्निटी भी कर दी, तो इसलिए औरतों को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं. फैमिली में भी, लाइफ में, वो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सेटल हो सकती हैं. पहले वो अच्छे से एजुकेशन लेंगी, एजुकेशन लेने में भी उनको कोई भी फिजिकल जो रुकावट है वो नहीं आती, क्योंकि सब कंफर्ट मिल रहे हैं, सब कुछ फ्री मिल रहा है, पेरेंट्स के ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है. उसके बाद पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, उसके बाद जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं और जिंदगी के सारे एवेन्यू ओपन हैं उनके लिए. अभी आप देखो पेपर में तकरीबन रोज ये खबर आएगी कि एक मजदूर है, उसकी लड़की ने मेडिसिन ज्वाइन करी, उसकी लड़की ने इंजीनियरिंग ज्वाइन करी. अभी कल मैं पढ़ रही थी कि एक वो डेली लेबरर थे, उनकी बेटी जो है स्पोर्ट्स में कहां आगे बढ़ गई हैं. सो ये बड़ी खुशी की बात, इसमें पेरेंट्स का भी रोल बहुत ज्यादा है. अब लड़की को ब्लेसिंग समझा जाता है, ये बेटी मेरी केयर करेगी. आगे ये होता था कि पेरेंट्स, इसके लड़का चाहिए कि लड़के, पेरेंट्स की डेथ होगी तो उनको लास्ट राइट्स कौन करेगा. अब मेरी एक फ्रेंड है, उसकी तीन बेटियां हैं, उसके हस्बैंड की डेथ हुई, उसकी बेटियों ने लास्ट राइट्स करे, कोई दिमाग में आया ही नहीं कि बेटा नहीं है कौन करेगा, बिल्कुल नहीं. सो ये जो सोशली माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है. जी, बहुत अच्छी बात.
0: अब बहुत देर से हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की, तो अब ये पैसे की बात चली है तो लखपति दीदी सुनने में बड़ा कैची लगता है अपने आप में. तो इसका अभी श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है और भारत सरकार को जाता है, वर्तमान सरकार को. तो लखपति दीदी कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहेंगे?
1: हाँ, लखपति दीदी डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट की बात है, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के दिमाग में दो बातें हैं कि औरत को डिग्निटी दो और उसको फ्रीडम दो और उसको कॉन्फिडेंस दो और उसको एम्पावर करो. ये जो लखपति दीदी, इसका भी यही है, क्योंकि ये काफी पुराना से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो चलते आ रहे हैं, औरतों के ग्रुप बन जाते हैं, वो पैसे कंट्रीब्यूट करती हैं, उसके बाद वो छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करती हैं. अब इन्होंने बजाय कि औरतें अपनी किट्टी से 10 रुपए दें, 20 रुपए दें, तो इन्होंने ये स्कीम बनाई है कि औरतों को वो गवर्नमेंट जो है 10,000 तक देगी, उससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म होंगे. सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो नए नए अपने बिजनेस चलाएंगी, नई नई चीजें बनाएंगी, क्राफ्ट की बनाएंगी. जैसे हमारी औरतें हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कैपेबल है, उनमें आर्ट बहुत है. अब देखो ये जो पाम ट्रीज होते हैं, उनके लीव से वो इतनी अच्छी टेबल मैट्स बनाती हैं, कोस्टर्स बनाती हैं. तो लेकिन पैसा कहाँ से आए, कहाँ से कलेक्ट करें, कैसे करें? तो ये जो पैसा सारा आएगा, जैसे मैंने आपको विलेज की बात करी, उस औरत ने मुझे बताया, कल मैं उसको मिली थी, वो कहती है कि मैडम हमारे गाँव में बोली लगी जमीन के लिए, हम लोगों ने लखपति दीदी से जमीन खरीद के उसको जो है अब उसके ऊपर खेती करेंगे और वो जो खेती का पैसा आएगा वो हम सब बांटेंगे और उसके साथ देखो कितने एम्पावरमेंट होएगी. तो ये जो इनिशियली औरतों को ये प्रॉब्लम थी कि पैसा नहीं है और मैं अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, मैं अपना क्राफ्ट कैसे स्टार्ट करूं, वो बंधन, वो रुकावट, वो चीज अब खत्म हो गई है. जब दिवाली आ रही है उसके लिए वो दिए बनाएंगी, कैंडल्स बनाएंगी और देखना लाखों में उसकी सेल हो गई. लखपति दीदी का बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होने वाला है लेटर ऑन इन द लॉन्ग रन.
0: दैट्स रियली नाइस मैम. हम देखते हैं कि सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस को केटर करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं, स्पेसिफिक स्कीम्स हैं. ट्रिपल तलाक एक ऐसा सेंसिटिव

0: ता रहा हमेशा ही, जिसपे बात करने से भी लोग बचते थे, मतलब एक तरह से कि उसको टच नहीं करना है. इट वॉज अ काइंड ऑफ टबू एंड दिस थिंग. अभी हमने देखा कि उस पर तो बाकायदा ना सिर्फ बात हुई बल्कि सोल्यूशन के साथ हमारी गवर्नमेंट आई है.
1: हाँ, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया इसके बारे में.
0: जी,
1: इसके बारे में हम लोग भी बड़ा परेशान रहते थे. क्योंकि जो वाइफ है उसको कभी भी ये श्योरिटी नहीं होती कि कल मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है. तो वाइफ की जो ना तो एजुकेशन है, ना सिक्योरिटी है, ना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, ना फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है,
0: और अपने राइट्स के बारे में मालूम भी नहीं है.
1: मालूम भी नहीं और वो कहाँ जाएगी और क्या करेगी. गुस्से में आके कई बार मियां बीबी के बीच में आपस में ऊंच नीच होती है, पर वो गुस्से में अगर आके वो बोल देता है कि तलाक तलाक तलाक, तो आपका रिलेशन टूट जाता है. और उसके बावजूद जो लड़की के ऊपर इम्पैक्ट होता है, जो उसको इनसिक्योरिटी है, बच्चों का क्या, बच्चे कहाँ पर जाएंगे, वो माँ के साथ जाएंगे, बाप के साथ. सो यू आर क्रिएटिंग ए वेरी इनसिक्योर सोसाइटी ऑल्सो. तो उसको
0: मैं आप इजाजत दें, इसमें मैं एक थोड़ा सा एंगल जोड़ने की कोशिश करूं कि अब तक समस्या ये थी कि वो अगर उसको परेशानी है भी इस चीज से तो वो किससे बात करे, अपने मदर से बात करे, सिस्टर से बात करे, हस्बैंड से बात करे, इन लॉ से बात करे, उसके पास ऑप्शन ही नहीं था. अभी हम देख रहे हैं कि जब सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेती है, आपको मौका देती है बोलने का, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं और सोल्यूशन के साथ आते हैं. आई थिंक ये अगर हम भारत की बात करते हैं आजादी के बाद से अब तक देखें तो कभी किसी ने छेड़ने का भी प्रयास नहीं किया इस मुद्दे को, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन है.
1: सरकार का एक बहुत बोल्ड स्टेप था, उन्होंने ये कानून पास करके दिया कि ट्रिपल तलाक जो है ये ऑफिशियली एक्सेप्टेबल नहीं है. तो इसमें भी औरत का वही स्टेप, वही अल्टीमेटली उसकी सिक्योरिटी, उसकी डिग्निटी, उसका कंफर्ट लाइफ में उसको बेचारी को हो गया, और आदमियों को भी थोड़ा सा ये अलर्ट हो गए कि अगर हमने कोई गलत काम किया या अपने आप को इतना एम्पावर, अपने आप पावरफुल महसूस करा और औरत को हमने ऐसे हैरेस करने की कोशिश करी, तो गवर्नमेंट इज ऑलवेज देयर बाय द साइड ऑफ द वुमेन. लॉ जो है औरतों की तरफ में ही है.
0: जी, आप लॉ की बात कर रहे हैं मैम, तो इसमें एक बात मन में और आती है, इन जनरल अगर हम देखते हैं तो उसमें नारी अदालत जो है, आई थिंक ये भी एक बड़ा स्टेप है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
1: नारी अदालत तो इतना बड़ा स्टेप है क्योंकि औरत जो है ना नॉर्मली वो हेजिटेट करती है. एक तो कोर्ट में जाना एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा, दूसरा औरत जाके अपने जो उसकी प्रॉब्लम है वो ओपनली कई बार एक्सप्रेस नहीं कर सकती. इसलिए दूसरा ये है कि नारी अदालत में तो खाली नारी के केसेस हैं, तो जैसे हम देखते हैं ना कि कोर्ट में इतने इतने केसेस इतने सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ये तो लिमिटेड केस होते हैं, इसका जो सोल्यूशन भी जल्दी निकलता है और नारी जो है वहां जाके अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है क्योंकि वहां पर जजेस भी लेडीज ही होती हैं. सो इसलिए वुमेन जो है दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ ओपनली कि मेरी क्या प्रॉब्लम है और मुझे क्या सोल्यूशन चाहिए. सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड स्टेप जो नारी अदालत वाला भी.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
0: वन स्टॉप सेंटर
1: जी, वो तो बहुत ही खूबसूरत चीज है
0: जी,
1: बहुत ही अच्छी चीज है. मैं कहती हूँ जिसके दिमाग से भी निकली बहुत अच्छे से निकली है. मेरे को याद है वो अरुण जेटली, वो इसके बहुत ही फेवर में थे. एक बार मुझे याद है हम उनको मिलने के लिए गए थे, तो उनका आइडिया था वन स्टॉप सेंटर का, तो उनके लिए मिलेंगे. तो उन्होंने कहा था आप थोड़े टाइम में देखना पूरे देश में कितने वन स्टॉप सेंटर हो जाएंगे. उसके साथ फिर औरतों को इतनी कन्वीनियंस हो गई, अगर किसी औरत के साथ कोई मिसहैप होता था, कोई असॉल्ट होता था, रेप होता था, वो शिकायत करने जाती थी, उसको पहले पुलिस थाने में जाना पड़ता था, फिर चेकअप के लिए हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, फिर उसके बाद केस के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था. अब एक ही छत के नीचे जब वो जाके अपनी कंप्लेंट किसी एनजीओ के साथ या कहाँ करती है, वन स्टॉप सेंटर में करती है, वहीं पर ही पुलिस कभी उसका केस एफआईआर लॉन्च करती है, वहीं पर ही उसको मेडिकल भी मिल जाती है, तो वो जगह जगह उसको भटकना नहीं पड़ता। तो ये औरत के लिए उस हालत में, जबकि वो बिल्कुल ही परेशानी की हालत में होती है, उस टाइम उसको ये सोल्यूशन देने, ये बहुत ही दूर तक दूरंदेशी की बात है कि वन स्टॉप सेंटर। मैं तो इसके फेवर में बहुत ज्यादा हूँ, वन स्टॉप सेंटर, और उसके बाद जो इनके काम

0: सकते हैं वन स्टॉप सेंटर में, रोज दिन ये डाटा जो है भेजा जाता है हेड ऑफिस में, कितने केसेस आए, कितने केसेस जो है आपने डील करे, कितने आपके सक्सेसफुल हुए, और जो वन स्टॉप सेंटर है उनकी अकाउंटेबिलिटी है बिकॉज ऑफ दिस डाटा के कारण अकाउंटेबिलिटी. नहीं तो आगे क्या होता था, जैसे मैंने कहा कानून पहले भी थे पर कानून बना एंड देन यू फॉरगेट अबाउट दैट. अब ये जो अकाउंटेबिलिटी होगी ना आपकी परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी उसका, क्योंकि डाटा जो है हर दिन सुबह शाम चलता है, तो उसके कारण आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी बहुत, आप क्या कर रहे हो औरतों के लिए, कितने केसेस कर रहे हो, उसको कैसे हैंडल कर रहे हो. ये नहीं कि औरत आई वन स्टॉप सेंटर में या आई उसमें डिस्ट्रिक्ट होम में जिसमें शक्ति सदन हम अब नाम देते हैं, आई तो आपने बॉर्डर ही नहीं करा. नो, आपको जवाब देना पड़ता है हर दिन कि कितने केसेस आए, कितने आपने सॉल्व करे. मेरे को ये चीज इस गवर्नमेंट की बहुत अच्छी लगती है जो अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो डाटा है वो तैयार होता है और वो जो ब्यूरोक्रेसी में हायर लेवल तक वो सर्कुलेट होता है. इसलिए इम्पैक्ट तभी कानून का होता है जब भी कानून की जो अकाउंटेबिलिटी हो. अगर आपने कानून बना दिया उसको भूल गए, किताबों में आपने लिख दिया हमने ये कानून बनाया लेकिन कानून की आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो उस कानून का कोई फायदा नहीं है. तो इस सरकार की सबसे सराहनीय, सबसे ज्यादा तारीफ वाली ये चीज है कि इन्होंने हर चीज का डाटा तैयार, आप गूगल में जाइए, ऑन करिए कंप्यूटर, आपको हर चीज का डाटा मिल जाएगा कि कितने केसेस वन स्टॉप सेंटर में हुए, कितने केसेस जुडिशरी में गए, कितने केसेस नारी अदालत में गए. एक क्लिक करने से आपको सारे परफॉर्मेंस का पता चल जाता है. सो दैट इज द बेस्ट थिंग विच दिस गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड.
1: जी हम डिजिटल भारत की बात बहुत आती है और अभी आपने भी जिक्र किया डिजिटाइजेशन को लेके, हमें लगता है यूपीआई को लेके भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बात बोलते हैं कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत में सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं कि इसका जो अभी यूज हो रहा है, और उसमें महिलाओं को जो पहले कैश कैरी करना, छुपाना और ये सब चीजें समस्याएं आती थी वो भी नहीं है कि वो फोन कैरी करती है और कहीं भी जाके पेमेंट कर देती है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नोटिस में नहीं आ पाती लेकिन बेनिफिट इनका इतना ज्यादा है, इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि वो सबके लिए बहुत फायदे की बात है, स्पेशली वुमेन फोक की अगर हम बात करें. शी बॉक्स पोर्टल जो है उसके बारे में प्लीज अगर आप बताएं.
0: शी बॉक्स पोर्टल तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां हम औरत की सेफ्टी का घर में बात कर रहे हैं, स्कूल में बात कर रहे हैं, वहां पर वर्क प्लेस में भी इसकी बात करनी बहुत जरूरी है कि औरत जो है जब वर्क प्लेस में जाती है तो वहां पर उसकी हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ, सेफ्टी के साथ एफिशिएंटली अपनी परफॉर्मेंस दे सके. तो उसके लिए हमारा 1997 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी, जेएस वर्मा गाइडलाइंस, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने उसके मुताबिक 2013 में पॉश एक्ट बनाया था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस. पर लड़कियों का क्या होता है, कई बार उनको समझ नहीं आती वेयर टू गो, हाउ टू मेक देयर कंप्लेन अगर वो अनकंफर्टेबल फील कर रही, क्योंकि इफ ए वुमेन इज फीलिंग अनकंफर्टेबल एट वर्क प्लेस तो उसकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट होता है, उसकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करता है. तो शी पोर्टल जो है वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस करी थी, क्योंकि चाहे ये कंपल्सरी है, इफ यू डोंट हैव दिस आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी तो आपको 50,000 का फाइन होता है. तो लेकिन कई जगह ऐसे फिर भी कई छोटी छोटी कंपनीज या कई छोटी छोटी ऐसी हैं जहां पर उन्होंने ये आईसीसी नहीं इंट्रोड्यूस करी थी. हालांकि कानून है कि 10 से ज्यादा अगर आपके एम्प्लॉय है तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी बहुत जरूरी है. तो कई जगह अभी भी उन्होंने इग्नोर कर दिया. तो अगर कोई लड़की हैरेस फील करती है और उसकी कमेटी नहीं है, तो वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री में वहां पर अपनी कंप्लेंट को दायर करवा सकती है. इस पोर्टल का ये फायदा है, वो ऐप है, आप ऐप को डाउनलोड करो और हर एक जो वर्किंग प्लेस है उनके लिए कंपल्सरी है कि शी पोर्टल को आपने डाउनलोड करना ही है. तो लड़की डायरेक्टली करती है, जैसे वो डायरेक्टली करती है इमीडिएटली मिनिस्ट्री उस प्लेस ऑफ वर्क को कॉन्टेक्ट करती है कि आपके इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्यों नहीं है, और वो मॉनिटर करती है उस लड़की की फिर शिकायत को हैंडल करने के लिए कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, क्या प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस अभी कहां तक पहुंचा है. तो उससे एक तो वो जो कंपनी है जहां पर वो लड़की काम कर रही है उनके ऊपर मिनिस्ट्री का कंट्रोल हो जाता है, दूसरा वो जो लड़की है उसकी प्रॉब्लम हल हो जाती है. एंड दिस इज हाउ गवर्नमेंट हैज ट्राई टू क्रिएट सेफ प्लेस फॉर द वर्किंग वुमेन ऑल्सो एट द वर्क प्लेस. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटेलिजेंट ये स्टेप है जो शी बॉक्स वाला है.
1: दैट्स वेरी नाइस मैम, वेरी इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट एक मुद्दा जिसपे बहुत बहुत बात बहुत वर्षों से होते आ रही है, कहाँ पहुंच रहे हैं ये देखना अभी बाकी है,

0: दैट इज वुमेन्स रिजर्वेशन बिल.
1: अब वुमेन के रिजर्वेशन बिल का तपस्या जी, मैंने इसकी डेवलपमेंट देखी है और आप सोशल चेंज के लिए बोलते हैं ना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि माइंडसेट लोगों के कैसे चेंज हुए. आज के दिन में देखो, इस मुद्दे को यूनैनिमसली एक्सेप्ट कर दिया गया, ये कानून पास हो गया 33%. उसमें क्या है कि औरत को एम्पावर करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि शी शुड बी पॉलिटिकली एम्पावर्ड. एक बार औरत पॉलिटिकली एम्पावर हो जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली पावर आ जाती है. तो 33% के साथ क्या होगा, जब आपने वो सीट वुमेन के लिए करी है रिजर्व और 33% वुमेन जब उसमें बैठेंगी पार्लियामेंट में, तो वो अपने आप में भी एक फोर्स कहलाएंगी. वो माइंडसेट चेंज होगा कि औरतें भी उतनी ही कैपेबल हैं, बल्कि ज्यादा हैं कि जितने हम कैपेबल हैं. औरत तो मल्टीटास्किंग करती है, घर भी देखती है, ऑफिस भी देखती है, समाज भी देखती है, बच्चों को भी देखती है. उसके अंदर तो मेरे को लगता है गॉड ने बिल्कुल फ्री टाइम में बैठ के उसको बनाया है. इंटेलिजेंस भी दी है, इमोशंस भी दी है, फिजिकल पावर भी दी है, मेंटल पावर भी दी है. और कहीं पर मैं सोचती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट यहीं से शुरू होती है कि परमात्मा ने भी यही सोचा कि औरत के अंदर ही पावर है कि शी कैन प्रोड्यूस अ चाइल्ड. क्योंकि चाइल्ड को प्रोड्यूस करना इज नॉट स्मॉल थिंग. आपको 9 months उसको कैरी करना है बॉडी में, फिर आपका जो प्रोसेस है उसको प्रोड्यूस करने का, उसके ब्रिंगिंग अप करने पर, मैं तो बहुत मानती हूँ. इसलिए औरत जो है, आई डोंट वांट टू कंपेयर देम, पर मैं ये कहती हूँ कि औरत बहुत ही ज्यादा पावरफुल है हर हिसाब से. वो घर घर में कोई, मैं देखती हूँ कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, इट्स ऑलवेज द वुमेन हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम. पर अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आपने दी है, तो मैं गवर्नमेंट को ये अब रिक्वेस्ट करूंगी, जहां आपने इतनी स्कीम्स चलाई हैं, वहां पर वुमेन की लीडरशिप की ट्रेनिंग का भी आपको स्टार्ट करना चाहिए. वुमेन को ये पता चले कि अगर उसने इलेक्शन कंटेस्ट करनी है तो व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द मींस, कैसे वो कर सकती है. और जब वो पार्लियामेंट में आती है तो पार्लियामेंट प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे वहां पर उसको कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तो उनको को तैयार करना, उसको अपनी पुरानी हिस्ट्री जो है वो बतानी चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ चल के आए, ताकि जब वो पार्लियामेंट में आती हैं, जब उनको पॉलिटिकल पावर मिलती है, तो दे शुड शो देयर कैपेबिलिटी उस फील्ड में भी दिखाएं, जहाँ हर फील्ड में उन्होंने दिखाई है. क्या आपने उनको इंजीनियर बनाया, हाउसवाइफ बनाया, मदर बनाया.
2: यहीं पर मैं एक बात आपसे अगर पूछूं, जो बात आप कह रही हैं, यहीं थोड़ा अगर आपसे समझें कि हम जब मेन फोक की बात करते हैं, उनको तो इस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिली, तो महिलाओं के लिए फिर एक नई चीज आ जाती है कि अगर आपको आना है तो ये करके आना होगा, पहली चीज. दूसरी बात मैं आपसे ये पूछूं, जब आप पार्लियामेंट की बात करते हैं तो उसमें बात आती है कि अगर महिलाओं में वाकई इतनी कैपेबिलिटीज हैं तो उनको मैंडेट मिलेगा, खुदा जाए वो रिजर्वेशन क्यों चाहिए. और एक बात और भी आती है मैम उसमें, ये कि जीत कर तो वो आ जाती हैं, सीट पे बैठ भी जाती है, लेकिन पीछे से रन कर रहे होते हैं उनके घर के जो मेल पर्सन होते हैं. तो बहुत सारी प्ली काउंटर इस तरह के क्वेश्चन और डाउट्स हैं, ये सब बहुत बार उठे हैं सवाल इस तरह के.
1: हाँ, जो था ना ये पति पंचायत, ये वर्ड भी कॉइन हुआ था, उसका सिर्फ रीजन यही है, आपने वहां पर रिजर्वेशन तो कर दी पर आपने औरतों को ट्रेन नहीं करा, आपने उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया, आपने उनको पॉलिटिकली एजुकेट नहीं किया. तभी मैं ये बात करती, दैट्स व्हाई द मेन दे यूज्ड टू इंटरफियर इन एवरीथिंग, दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी, मैं उसमें नहीं जाना चाहती. पर हमें उसकी रेमेडी, ये रेमेडी यही है कि औरत को पूरी लीडरशिप की ट्रेनिंग दो. अब कहते हैं ना, आदमी अपने आप कर लेते हैं, आदमी अपने आप इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आदमी के लिए कोई चेक लिस्ट नहीं है. जैसे हम औरतों को पूरा मापते तोलते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, एज हाउसवाइफ कैसी है, एज मदर कैसी है, एज पॉलिटिकल लीडर कैसी है, वैसे हम आदमियों के मापदंड नहीं करते हैं. वो इलेक्शन तो वो जीत गए, लेकिन उनको आपने ये नहीं बताया कि आपका पार्लियामेंट में जाके रोल क्या है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लीडरशिप क्वालिटीज के लिए ट्रेनिंग औरतों को देनी, चाहे वो कॉलेजेस में स्टार्ट करें, चाहे वो एनजीओस इंट्रोड्यूस करें, जहां पर आप बाकी ट्रेनिंग देते हैं वहां पर ये भी एक आपका सिलेबस में होना चाहिए कि लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करें, कि औरत को भी एम्पावर करो, और दूसरा औरत में कॉन्फिडेंस रखो कि अगर आपने उसको कुर्सी पर बिठाया, जैसे वो घर को हैंडल करती है, घर की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, वैसे वो ऑफिस की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगी. पर औरत की कैपेबिलिटी पर डाउट मत करो, उसको भी आगे आने दो, उसको भी इक्वल राइट दो, इक्वल स्टेटस दो, डिग्निटी दो, तो औरत भी देखो कहां के कहां पहुंच जाएगी आपकी. देयर इज नो डाउट, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स.
2: बिल्कुल बल्कि मैम, मैं तो इसमें एक चीज और जोड़ूंगी, जो हमने सोसाइटी में देखा है जनरली, वो ये कि आपको क्वेश्चन क्या आता है आपकी एबिलिटीज को, कैपेबिलिटीज

0: बस फंड्स नहीं है तो एजुकेशन ट्रस्ट से हम उनको हेल्प करते हैं। दूसरा जो बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा डे केयर सेंटर है। जैसे आजकल लड़कियां जॉब करने चली जाती हैं, मदर इन लॉ या मदर्स अकेली रह जाती हैं, तो सुबह 9 बजे हम सेंटर पर उनको बुला लेते हैं और वहाँ के सारी सेम एज की होती हैं, उनको कुछ ना कुछ जैसे दिए की बत्तियां बनाना, जो मैट्स होती हैं वो बनाने सिखाना, खाना दोपहर का उनको दिया जाता है, टीवी के प्रोग्राम चलते हैं और शाम को 5 बजे वो घर चली जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें हम विलेजेस अडॉप्ट करके लोगों की मेडिकल केयर करते हैं, जैसे अनीमिया टेस्ट करते हैं, मेडिसिन दी जाती है, आईज से टेस्ट होती है, मतलब जो ग्रास रूट लेवल के जो बड़े रिमोट विलेजेस हैं वहाँ पर लोगों की हेल्थ की थोड़ी अवेयरनेस भी नहीं है, अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। और बाकी हर लेवल में, हर फील्ड में, एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट चेंज में, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पार्टिसिपेशन है। यूएन में भी हर साल हम विमेन इशू पर पार्टिसिपेट करके वहाँ पर अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं। कमाल की बात ये है कि सब वॉलंटरी काम करते हैं।
1: वाह वाह जी,
0: हम यही इंजॉय करते हैं कि हम आपस में काम कर रहे हैं, एटलीस्ट हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो अभी हम उस खुशी में स्टार्ट कर रहे हैं, 22 नवंबर को वो इंटरनेशनल वुमेंस डे अगेंस्ट वायलेंस है, उसमें हम एक वैकाथॉन कर रहे हैं क्योंकि हमारे काफी सीनियर मेंबर्स हैं। नाम तो उसका मैराथन था पर हमने वैकाथॉन इसलिए करा कि काफी मेंबर शायद भाग नहीं पाएंगे
1: जी।
0: तो वो हम कर रहे हैं पूरे देश में, पैन इंडिया। टी शर्ट्स हम उनको दे रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें हमने सेंटनरी का लोगो भी बनाया है, हमारा पुराना ARWC का लोगो भी है, और वो लोग जो हैं वो एक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो भी जिसको कन्वीनियंट है वॉक करके, वी वांट टू स्प्रेड दिस मैसेज, प्लीज स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये हमारा है,
1: बहुत बढ़िया।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: अभी आपने मैम बात की तो बस चलते चलते आपसे ये और समझे, आप बहुत सी कंट्रीज में भी आपने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया और अपनी बात भी रखी है। हम इसराइल की बात करें, काठमांडू है, आई थिंक आप पेरिस भी गए हैं।
0: पेरिस तो मैं 6 बार गई हूँ।
1: वाह वाह क्या बात है।
0: क्योंकि वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ मैं जुड़ी हुई और वहाँ पर वो मेरे को बुलाते थे, दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट इंडिया। और JS वर्मा की कमेटी के बाद जो अमेंडमेंट हुई लॉज में उसका क्या इम्पैक्ट है। फिर उनका मेन इम्पॉर्टेंट हुआ करता था सरोगेसी के बारे में। सरोगेसी में मेरी उसमें बहुत इंटरेस्ट है मेरा, दैट इज माय स्पेशलाइजेशन, कि उसका इम्पैक्ट औरतों के ऊपर क्या होता है और कैसे उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो मेरे को उसके लिए भी बुलाते थे। फिर एक बार मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग वहां पर उनको बताया था कि हमारे कानून क्या है और हमारे जो पुराने सिस्टम अपने चले हुए हैं वो क्या है, वो हमारे बिलीफ क्या है, वो सारा कंपैरिजन मैंने उनको बताया था। फिर मेरे को वहाँ के जो मेयर थी पेरिस की, उन्होंने इनवाइट किया था। फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे,
1: क्या बात,
0: उनके सामने फिर हमारी प्रेजेंटेशन हुई थी, उनके सामने फिर मैंने ये प्रेजेंटेशन करी थी कि आज कैसे हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ रहा है, औरतों की हालत कैसे ठीक हो रही है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया आफ्टर JS वर्मा's वो स्ट्रिक्ट लॉस। उन्होंने उसके लिए मुझे इनवाइट करा था तो मैंने उसके ऊपर बोला था। इसराइल में भी ये था, इसराइल में मैंने जो अभी शक्ति सदन है उसमें मैंने 7 साल काम किया है
1: जी।
0: तो उन्होंने मेरे को इसलिए बुलाया था कि आप औरतों को एम्पावरमेंट के लिए उनको आप क्या क्या काम करती हैं उनको एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसके बारे में मैं इसराइल गई थी। रशिया में भी वहाँ पर हमने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में प्रेजेंटेशन दी थी। और अभी नेपाल में तो हमारा लास्ट ईयर में गई थी, जब व्हेन आई वाज सेक्रेटरी उस टाइम वहाँ पर वो एक वुमेन का ग्रुप बना है। एशियन जो कंट्रीज हैं उनका अपना एक ग्रुप होना चाहिए जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करे। उसमें फिर हमने वहाँ जाके तो सरोगेसी के बारे में सबके साथ शेयर करा था कि उसका औरत पर क्या इम्पैक्ट है, तो वो जो नेपाल की प्रेसिडेंट थी, तभी लेडी प्रेसिडेंट थी, शी इनवाइटेड अस एट हर प्लेस आल्सो। सो सबसे जब मिलते हैं, दूसरे कंट्रीज का जब पता चले, जाए इसराइल में गए, इसराइल में 15 दिन के लिए उन्होंने हमें रखा और सब कंट्रीज से वहां

0: लोग आए थे, मतलब फिलीपींस तक के लोग आए थे, सभी इंटरेक्शन होती है, देन यू रियलाइज के बाकी कंट्रीज की क्या हालत है और आपकी कंट्री के प्लस पॉइंट्स क्या हैं, फिर आप शेयर करते हैं कि हमारे मुल्क में ये होता है। जब दूसरे मुल्क से आप सीख के आते हैं कि ये होता है, दैट मैसेज यू ब्रिंग टू योर ओन कंट्री एंड यू कन्वे कि ये चीज वहां सक्सेसफुल हो रही है, सेम थिंग वी शुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस।
1: बिल्कुल जी।
0: फिर उसके बेसिस पर हम ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में सेमिनार करते हैं अपने लोगों को बुला के, और हमारा एक मैगजीन निकलता है क्वार्टरली रोशनी, उसमें हम आर्टिकल में अक्सर लिखती हूँ फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में लिखती हूँ, और कैसे औरतों को एम्पावर किया जा सकता है, कैसे औरतों की एक्सप्लॉयटेशन कैसे खत्म, कुछ उसके फिगर देते हैं, कुछ हिस्ट्री भी देते हैं, सो दैट पीपल शुड लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। तो उसको फिर वहां पर हम यूज करते हैं। सो जहां भी मेरा हो सकता है, मैं 3-4 बार न्यूयॉर्क भी गई हूं वहां जाके, और अभी कोरोना के दिनों में जब हम वहां नहीं जा सके तो हमने ऑनलाइन ये मैंने करा था, द कंडीशन ऑफ वुमेन, जो वर्किंग वुमेन थी कोरोना के टाइम में उनकी क्या हालत हुई, क्योंकि मोस्टली घर से कर रही थी, और अदरवाइज व्हाट वर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन-लॉज, व्हाट वर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द चिल्ड्रन, तो औरत को कैसे डबल रोल प्ले करना पड़ा और घरों में कितनी वायलेंस हुई। फिर मैंने उस वायलेंस की पूरी रिपोर्ट बना के भी यूएन में भेजी थी, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज में भी वो मीटिंग्स होती हैं जहां पर वो एनजीओस को बुलाते हैं कि आप रिकमेंडेशन दीजिए कि गवर्नमेंट को विमेन सेफ्टी के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने 3 बार उस पार्लियामेंट्री कमेटी में भी पार्टिसिपेट करा है जहां पर मैंने रिकमेंडेशन दी है अपने बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए।
1: सो ऑल इन ऑल मैम, हम ये कह सकते हैं कि आज का जो सिनेरियो उसमें कि जिस देश में राष्ट्रपति महिला हो, जिस देश में फाइनेंस मिनिस्टर महिला हो, जिस देश की राजधानी की मुख्यमंत्री हैं वो महिला हों, तो हमें लगता है संदेश सबके लिए है कि आम जन परिवार इस बात को समझे कि अगर आप अपनी बच्चियों को, अपने घर की लड़कियों और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देते हैं तो सितारों से आगे जहां और भी हैं,
0: बिल्कुल ठीक,
1: और वो अगर सशक्त होंगी तो उसका डेफिनेटली जो लाभ है वो आपको भी मिलेगा। तो यही हम उम्मीद करते हैं। मैम चलते चलते आप कुछ अगर संदेश देना
0: चाहें। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैंने आगे भी ये कहा कि अगर पहले हम कहते हैं ना एजुकेट अ वुमेन एंड यू एजुकेट द होल फैमिली, यू एम्पावर अ वुमेन एंड यू एम्पावर द होल कंट्री, क्योंकि औरत जो है वो पूरे हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है वो है जो औरत है, औरत ही सबको चलाती है, घर भी चलाती है, बच्चों को पालती है, बच्चों को जो वो ये कहा जाता है कि मैं जो कैरिंग ए चाइल्ड, आपके जो उस टाइम वैल्यूज और आइडियाज हैं वो आपके बच्चों में जाएंगे, तो आप बच्चों को जब पालते पोसते हैं अच्छे से पालते हैं, उसको वैल्यूज देते हैं, अगर औरत पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, हिस्ट्री के बारे में पता होगा, सोसाइटी के बारे में पता होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो शी विल ब्रिंग अप हर चिल्ड्रन ऑल्सो इन दैट वे एंड विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए वेरी केपेबल एंड इंटेलिजेंट सोसाइटी ऑल्सो।
1: ट्रूली जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलजीत कौर मैम, आप सच में यहाँ पर आए, और आपको बहुत बहुत बधाई। आपके ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस खुशी में भी आप बहुत सारे प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं। हम इतना इंग्रॉस्ड आपकी बातचीत में हो गए कि टेक्निकली बहुत सारी चीजें जो है वो जहन से रह गई, और बहुत सी बातें अभी आपसे हमें और करनी थी, लेकिन आप जानती हैं थोड़ा वक्त की भी अपनी सीमा होती है। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तपस्या जी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।
3: गाने बाजू ओने रेडियो शुंचो 107 एफएम रेनबो शात शुरे शारदी।
4: एकटी घोषणा, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिमबंग सर्कलर सभापतित्वे 138तम डाक आदालत और पेंशन आदालत आगामी 28/10/2026 तारीखे मुख्य पोस्टमास्टर जनरलर अफिस पश्चिमबंग सर्कल जोगाजोग भवन P36 सीआर एवेन्यू कोलकाता 712 बेला 12:30 गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसर माध्यमे अनुष्ठित होबे। एई आदालते पश्चिमबंग, सिक्किम एवं आंदामान और निकोबर द्वीपपुंज समूहर डाक परिसेवा और डाकघर पेंशन उपभोक्तार पेंशन संक्रांत समस्या अथवा अभियोगेर सुराहा करा हबे। जारा एखाने सुराहार जन्य आवेदन करबेन तारा स्पष्ट करे जेमन तादेर अभियोगटी लिखबेन तेमनी तार संगे जुक्त थाका नथि और डाक विभागेर तरफे पावा कोनो चिठिर रेफरेंस नम्बर और अन्यान्य विषय उल्लेख करबेन। অভিযোগকারীদের

0: অবশ্যই তাদের মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে। অভিযোগপত্রটি যোগাযোগ ভবনের ঠিকানায় 30/9/2026 মধ্যে পাঠাতে হবে। শ্রী এস সি দাস, ADPS CS, মুখ্য পোস্টমাস্টার জেনারেলের অফিস, পশ্চিমবঙ্গ সার্কেল, P36, সিআর অ্যাভিনিউ, কলকাতা 7/12 ঠিকানায়। ইমেলের মাধ্যমেও অভিযোগ জমা দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে ইমেল করতে হবে cpmg_wb@indiapost.gov.in, adpgcowb@gmail.com অথবা pg.wb@indiapost.gov.in।
1: এশিয়ান গেমস 2026 আইচি নাগোয়া।
2: जापान में चल रहे 20वें एशियन गेम्स में हर रोज भारतीय एथलीट जिद, जुनून, जतन और जुझारूपन की ऐसी कहानी रच रहे हैं जिसकी हर तस्वीर, हर मोड़, हर किरदार अपना सा लगता है। तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है तो जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं लगती, पूरा भारत जश्न मनाता है। उनकी जद्दोजहद सिर्फ मैदान पर नहीं दिखती, उसकी तपिश हम सब तक पहुँचती है और जब मंजिल बस एक कदम दूर रह जाती है तो उसकी चूक की कसक हम सबको महसूस होती है। रविवार को भी ये सभी रंग, सभी जज्बात देखने को मिले। बॉक्सिंग रिंग में और हॉकी के मैदान पर जहां भारत का विजय रथ जारी रहा, तो वहीं एथलेटिक्स में भी अलग अलग इवेंट्स में हमारे एथलीट्स ने पदक जीते। स्क्वॉश में कहानी टू नियर ये टू फार की रही, तो वॉलीबॉल और आर्चरी से दिल खुश करने वाले समाचार मिले। कुल भारत के लिए आज 7 पदक आए हैं और सबका विश्लेषण लेकर आकाशवाणी की टीम हाजिर है। मैं हूं दर्पणती क्या, आइए जानते हैं 27 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों ने क्या क्या गुल खिलाए। शुरुआत करते हैं एथलेटिक्स से, जहां आज भारत ने 5 पदक जीते। नागोया का मिजुहू पार्क एथलेटिक स्टेडियम आज भी बरसात के कारण तरबतर रहा। सतह गीली थी और इस वजह से खिलाड़ियों को संयम, संतुलन और तकनीकी दक्षता का परिचय देना था। हेडलाइन एक्ट रही एनसी सोजन, जिन्होंने महिलाओं की लॉन्ग जंप में भारत को रजत पदक दिलाया। एनसी की पहली जंप 6.49 मीटर की रही, जिसके बाद वो गोल्ड मेडल पोजिशन में लगा तार बनी रही। अपने 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने 6.53 मीटर की दूरी तय कर उम्मीदें और पुख्ता कर ली, लेकिन अपने आखिरी अटेम्प्ट में चीन की यिंगयिंग हुआंग ने 6.56 मीटर की कूद लगा उन्हें पीछे छोड़ा और एनसी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसी प्रतियोगिता में भारत की शैली सिंह भी हिस्सा ले रही थी, जिनका बेस्ट अटेम्प्ट 6.42 मीटर का रहा और इसके चलते वो 4थे स्थान पर रही। दूसरा पदक आया पुरुषों की ऊंची कूद यानी हाई जंप से, जहां भारत के सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की कूद लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। फिर पुरुषों की डेकेथलॉन में तेजस्विन शंकर ने 1974 के बाद इंडिया को पहला पदक दिलाया एशियन गेम्स में। कल का दिन खत्म होने पर तेजस्विन नंबर 1 थे, लेकिन आज सरक कर तीसरे पायदान पर आ गए और अंततः ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने गले में पहना। स्टैमिना और स्फूर्ति का परिचय पारुल चौधरी ने भी दिया। 3000 मीटर की महिलाओं की स्टीपल चेज में तीसरा पायदान प्राप्त कर पारुल ने दिलाया कांस्य पदक। लेकिन शायद एक सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी भारत की हरिता भद्रा, जो महिलाओं के 200 मीटर में कांस्य पदक ले आई। 23.20 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर हरिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी दौड़ में उन्नति बोलेंड भी शिरकत कर रही थी और उन्हें 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा एथलेटिक्स में कई और एथलीट्स ने अपने आप को पदक की दौड़ में बनाए रखा हुआ है। 400 मीटर बाधा दौड़ में पुरुषों में एस सरन फाइनल में पहुंच गए हैं, तो वहीं महिलाओं में विद्या रामराज भी फाइनल में शिरकत करते हुए नजर आएंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्री शंकर और डेविड पट्टूराज भी फाइनल का रास्ता तय कर चुके हैं। पुरुषों की 800 मीटर की दौड़ में मोहम्मद अफजल और कृष्णा कुमार भी फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे। महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में तमन्ना, स्नेहा, सुदेशना और अभिन्या की चौकड़ी ने पहला स्थान प्राप्त कर अपना सीजन बेस्ट दिया और फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया। तो वहीं पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में अनिमेश खुजूर 5वें स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इस दौड़ में गीली सतह होने के बावजूद थाईलैंड के पुरीपोल बुनसोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया और केवल 19.88 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की। वो बने स्वर्ण पदक विजेता। 3 पदक बॉक्सिंग रिंग में भी आज सुनिश्चित हुए और बताते हैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
3: एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए शानदार खबर है। भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 और पदक पक्के कर लिए हैं। अंकुश

0: बंगाल, परवीन और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के अंकुश पंघाल ने ताजिकिस्तान के नेक्रुस सलीमोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। अंकुश ने पूरे मुकाबले में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए निर्णायकों को प्रभावित करते हुए स्पष्ट जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अंकुश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमोव को 5-0 से मात दी। परवीन ने मुकाबले के 3 राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। जीत के साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया। पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अथापोंग सेकटेप के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। नरेंद्र ने मुकाबला RSC यानी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम किया। इस जीत के साथ नरेंद्र भी सेमीफाइनल में पहुंच गए और भारत का 3रा पदक भी सुनिश्चित कर लिया। हालांकि पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के सचिन सिवाच को निराशा हाथ लगी। सचिन को जापान के शुनसुके किटामोतो ने 5-0 से हराया। इसके साथ ही सचिन का एशियन गेम्स अभियान क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरह बॉक्सिंग में आज भारत ने 3 और पदक पक्के किए, अंकुश, परवीन, नरेंद्र। अब सेमीफाइनल में पदक का रंग बदलने के इरादे से ये तीनों खिलाड़ी रिंग में उतरेंगे।
1: Much like this, 2 medals were confirmed earlier in squash as well. Youngsters Abhay Singh and Anahat Singh had made it to the singles final and assured at least a silver medal for themselves yesterday. Today, they featured in their respective gold medal matches. First was Abhay Singh in the men's singles final where he went down to Malaysia's Yan Yeo. Then, teenage prodigy Anahat Singh also suffered the same fate against a Malaysian opponent. Both these players missed out on not just the gold medal, but also on a direct qualification to the LA 2028 Olympics. However, at the end of the day, they wore the silver medal that they had won with pride, and it is just the beginning of something special in Indian squash. India have won its most medals in the shooting range in this year's Asian Games. What happened on Sunday? Vidushi Vats with the report.
2: Starting with the women's trap competition, Neeru Dhanda continues to be one of the standout performers for India. She's currently sitting at number 1 in the individual standings, hitting 48 out of 50 targets. There is also good news in the team competition. The Indian women's trap team has finished day 2 in second position, keeping themselves firmly in medal contention as the event moves towards its final stage. Ashima Ahlawat is currently placed 16th individually. Moving to the men's trap event, Kainan Chennai made a brilliant start, producing a perfect opening round by hitting all 25 targets. He followed that with 22 in the next round and is currently placed 11th individually. Shapath Bhardwaj is currently in 22nd position, while the Indian men's team finished day 1 in 7th place in the team standings. And now, moving from trap to pistol, the Indian women have completed the precision qualification in the 25-meter pistol event. Esha Singh is leading the Indian challenge at this stage. She finished the precision qualification with 290 points, putting her in 6th position. Rahi Sarnobat and Manu Bhakar are next for India, both finishing on 287 points. Rahi is currently placed 15th, while Manu is at 16th. Importantly, this is not the end of the 25-meter pistol competition. There is still more action to come, with the Indian trio looking to build on these scores as the event progresses.
1: दूसरी तरफ हॉकी के मैदान में भारतीय टीम का विजय रथ जारी रहा। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। महिला टीम ने सिंगापुर के खिलाफ 7-0 से जीत पा इस बात को सुनिश्चित किया कि वो ग्रुप स्टेज पर अजय रहे और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अपना ग्रुप स्टेज कैंपेन अंत करे। अब सेमीफाइनल में सामने होने वाली है दक्षिण कोरिया। कुछ इसी तरह के संकेत आर्चरी रेंज से भी देखने को मिले हैं, विदुषी बताती हैं।
2: इन द मेंस रिकर्व टीम क्वार्टर फाइनल, धीरज, नीरज एंड यशदीप प्रोड्यूस्ड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अगेंस्ट चाइना, विनिंग 5-2 टू बुक देयर प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। द वुमेन्स रिकर्व टीम ऑफ अंकिता, कुमकुम एंड कीर्ति डिफीटेड चाइनीज ताइपी 6-0 इन देयर क्वार्टर फाइनल टू मार्च इनटू द लास्ट 4। एंड इंडियाज मिक्स्ड रिकर्व टीम ऑल्सो मेड इट थ्रू। धीरज एंड कुमकुम हैव बीन क्लिनिकल थ्रू आउट द नॉकआउट स्टेज। दे बिगन विद 6-0 victory over the United Arab Emirates in the round of 16 and followed that up with another commanding 6-0 win over Vietnam in the quarterfinal. And now,

0: A semi-final against Japan to look forward to. So in recurve, India has three teams through to the semi-finals. The men's team will face Iran, the women's team will take on China, and the mixed team will face Japan. These three recurve semi-finals are scheduled for October 2nd. But the good news from Indian archery does not stop there. The compound teams have also delivered across the board, with India reaching the semi-finals in the men's, women's and mixed team events. In the men's compound team quarterfinal, Sahil, Ganesh and Kushal edged past Bhutan 235-232 in a closely fought contest. The women's compound team of Chikita, Jyoti and Pritika also booked their semi-final place, defeating Kazakhstan 233-230. And there was another impressive performance in the compound mixed team event by Chikita and Sahil, who first defeated Mongolia 161-46 in the round of 16 before overcoming Kazakhstan 159-154 in the quarterfinal. They are now through to the semi-finals, where they'll face Thailand. The compound men's and women's team will both face South Korea in the semi-finals. These three compound semi-finals are scheduled for September 30. All in all, it has been an absolutely fantastic day for Indian archery.
1: हालांकि बैडमिंटन कोर्ट से हताश करने वाली खबर है, मोहम्मद शाहिद आजमी से जानते हैं।
2: एशियाई खेलों में बैडमिंटन के लिहाज से भारत के लिए आज का दिन बेहद निराशाजनक रहा। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के क्वार्टर फाइनल में भारत के चारों मुकाबले हार के साथ समाप्त हुए और इसी के साथ बैडमिंटन में भारत की पदक की चुनौती भी खत्म हो गई। महिला एकल में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को चीन की विश्व नंबर 4 और ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई ने 3 गेम के मुकाबले में हराया। चेन यू फेई ने सिंधु को 21-11, 18-21, 21-10 से शिकस्त दी। करीब 75 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधु ने दूसरा गेम जीतकर शानदार वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में चेन यू फेई ने बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। महिला एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने अपने एशियाई खेल पदार्पण पर जापान की 3 वर्ग विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी। उन्नति ने दूसरा गेम अपने नाम किया, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी मलेशिया की पोलिटैन और थीना मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार गई। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो को चीन की फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग ने कड़े मुकाबले में 14-21, 21-18, 18-21 से हराया। इस तरह एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत की चुनौती एक कांस्य पदक जो पुरुष टीम वर्ग में मिला था, इसके साथ समाप्त हो गयी।
1: फिर चलते हैं वॉलीबॉल की ओर, जहां पर भारतीय टीम ने पुरजोर आगाज किया है। बताते हैं आलोक,
3: भारतीय टीम जो आखिरी बार 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पोडियम पर रही थी, ने पूल सी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कप्तान जोरम चार्ल्स के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआती मैच में 58वीं रैंक वाली वियतनाम टीम को 3-0 से हराया। हालांकि पहला सेट बेहद करीबी रहा, लेकिन भारतीय टीम ने पहले सेट को 25-23 से जीता। दूसरे सेट में भारतीय टीम 25-21 से जीत करके मुकाबले में भारतीय टीम 2-0 से आगे होगी और तीसरे सेट में भारतीय टीम 25-20 से जीत करके इस मुकाबले को 3-0 से अपने नाम किया। सर्बियाई कोच ड्रैगन महलोविक के मार्गदर्शन में खेल रही भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल सुबह 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार हांगकांग से होगा।
1: वॉलीबॉल जैसा ही एक रोमांचक खेल है सेपेक टेक्रो। वहाँ भारतीय टीम का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
0: India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines. And the Philippines came away with another straight games victory. So India have now suffered 2 defeats in 2 Group B matches, losing both encounters 0-2. It has certainly been a challenging start for the Indian pair in the women's doubles. India will now look to their remaining group commitments as they aim to keep their campaign alive and finish strongly.
1: इसके बाद चलते हैं भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की ओर।
2: एशियाई खेलों में महिला वेट लिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर 9वें स्थान पर रही। हरजिंदर ने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाया। स्नैच में उन्होंने 94 किलोग्राम का सफल प्रयास किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 110 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस तरह हरजिंदर का कुल स्कोर 204 किलोग्राम रहा। उन्होंने प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की सोंग बुक हॉन्ग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 273 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चीनी ताइपे की चेन वेन हुई ने कुल 232 किलोग्राम के साथ रजत, जबकि बहरीन की इंग्रिड गुएसो ने 229 किलोग्राम

0: के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
1: फाइट स्पोर्ट कुराश में भारतीय खिलाड़ियों का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
2: इन द मेंस प्लस 90 किलोग्राम कैटेगरी यश कुमार चौहान लॉस्ट हिज राउंड ऑफ 16 बाउट 0-10 तजाकिस्तान्स मिरमामादोव, व्हाइल विशाल डिड मेक इट थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स इन द सेम कैटेगरी बट हिज कैंपेन एंडेड देयर आफ्टर अ 0-5 लॉस।

0: In the women's 57 kilogram category, Sangeeta was beaten 0-10 by the Philippines' Quelino in the round of 32. Bharti also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Tahere. So, four Indian Kurash athletes in action today, and all four have now been eliminated.
1: Moving on to fencing.
0: India's women's sabre team saw their Asian Games campaign come to an end in the quarterfinals. The Indian team, featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin J.S. and Shruti Joshi, began the team event with a convincing 45-23 victory over Indonesia in the round of 16. They then put up a strong fight in the quarterfinals but went down 35-45 to Uzbekistan in the last eight. So, India's women's sabre team finishes its campaign at the quarterfinal stage, just missing out on a place in the semi-finals.
1: अन्य खेलों का लबोलुभाव लेकर आलोक।
2: व्यक्तिगत घुड़सवारी ड्रेसेज इवेंट में हृदय विपुल छेरा ने 72.680 और उनके साथी जयसूद ने 71.490 का स्कोर किया। वो क्रमशः 8वें और 9वें पायदान पर है। दोनों राइडर्स क्वालिफिकेशन राउंड तक से फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाए। गौरतलब है कि इससे पहले 2022 के एशियाई गेमों में भारत के लिए अनुषा अग्रवाल ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं बात करते हैं सर्फिंग की। पहली बार एशियाई खेल में शामिल किए गए सर्फिंग से आज भारत के लिए मिक्स रिजल्ट रहा। मेंस शॉर्ट बोर्ड में भारत के किशोर कुमार अबारसु राउंड में 9.33 स्कोर के साथ पहले स्थान पर क्वालिफाई किया। राउंड टू में उन्हें बाय मिला। तीसरे राउंड में उनका मुकाबला चीन के वेंग सॉन्ग से होगा। शिवराज बाबू ने 7.03 का स्कोर किया और राउंड टू में उनका मुकाबला था आज ईरान के दाऊद खादिर के साथ। उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है 8.96 के मुकाबले 3.60 के स्कोर के साथ। तीसरे राउंड में उनका अगला मुकाबला फिलीपींस से होगा। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं वुमेन्स शॉर्ट बोर्ड में कामली प्रकाश और शांति गोयन ने राउंड टू का मुकाबला जीता, लेकिन राउंड तीन में वो अपना मुकाबला हार। इस प्रकार एशियन गेम्स से उनका सफर खत्म हो गया है। दोनों भारतीय खिलाड़ी 9वें पायदान पर रहे।
1: इसके बाद भारत 4 गोल्ड, 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ कुल 37 मेडल लेकर 12वें स्थान पर है। चीन पहले, जापान दूसरे तो दक्षिण कोरिया तीसरे पर। अब बात करते हैं कल की। सोमवार 28 सितंबर को भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होने वाली है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आगाज करने वाली है अपने कैंपेन का। क्वार्टर फाइनल में सामने होगी अफगानिस्तान की चुनौती और बारिश के चलते टीम को अभ्यास करने का ज्यादा मौका मिला नहीं है। उसके बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं।
3: इस बारिश है वो तो हम रीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि वी आर अ बंच ऑफ प्रोफेशनल्स एंड ऐसे सब हर्डल्स आते रहेंगे और हमें मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज गोइंग टू बी। प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज टू कम एंड प्ले द मैच। यहाँ का विकेट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में नहीं सेट हो सकता है, बट जैसे कि मैंने कहा पहले कि अडैप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजिंग तो होगा ही, डिफिकल्ट होगा, हर एक टीम के लिए होगा।
1: हॉकी के मैदान पर भारतीय पुरुष टीम खेलने वाली है अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला बांग्लादेश के विरुद्ध। सेमीफाइनल से पहले मोमेंटम बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला है जरूरी। तो वहीं बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले हैं कपिल और प्रिया घंगस अपनी अपनी क्वार्टर फाइनल बाउट में। इसके साथ ही ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन पर भी नजरें होंगी। देन इन द आर्चरी रेंज इंडिविजुअल कॉम्पिटिशंस विल स्टार्ट। वी विल हैव आवर आईज ऑन मेन एंड वुमेन फ्रॉम बोथ रिकर्व एंड कंपाउंड आर्चरी। इन एथलेटिक्स गुलवीर सिंह एंड यूनुस शाह विल बी फाइटिंग फॉर अ मेडल इन द 1500 मीटर मेंस रेस। मीनवाइल पारुल चौधरी हु वन अ गोल्ड मेडल इन द 5000 मीटर इन द प्रीवियस एशियन गेम्स विल बी कंपीटिंग टुमारो। इन द मेंस लॉन्ग जंप फाइनल मुरली श्रीशंकर एंड डेविड पट्टूराज विल बी फीचरिंग। बाधा दौड़ में 400 मीटर में पुरुषों में तमिला सरन तो महिलाओं में विद्या रामराज फाइनल खेलेंगी। भारत की मिक्स रिले टीम भी 4x100 मीटर की दौड़ में फाइनल खेलते हुए नजर आएंगी। सीमा विल ऑल्सो फीचर इन द वुमेन्स डिस्कस थ्रो फाइनल। तो वहीं पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में सूबेदार अविनाश साबले शिरकत करते हुए दिखेंगे। इन शूटिंग आईज विल बी ऑन द ट्रायो ऑफ ईशा सिंह, मनु भाकर and Rahi Sarnobat, as well as the men's and the women's team in the trap competition. इसके अलावा सर्फिंग में किशोर कुमार और शिवराज बाबू पर होगी नजर। वॉलीबॉल में पुरुषों के सामने होगी हांगकांग, तो सेपक तकराव डबल्स में महिलाओं के सामने जापान। और कल एक बार फिर इसी समय आकाशवाणी की टीम हाजिर होगी भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का लबोलुभाव लेकर। फिलहाल मुझे दर्पण टिकिया को एडिटर विशाल कुमार और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
4: एशियन गेम्स 2000